FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा

0: भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के दो मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हे भोलेनाथ, हे महादेव जी, आपको बारंबार प्रणाम है, नमन है।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना जगजीत सिंह, एम एस सुब्बलक्ष्मी, मोहम्मद रफी, नरेश मल्होत्रा और साथियों को FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: हमेशा किसी की बाह्य स्थिति से उसकी वास्तविक स्थिति का अनुमान न लगाया करो और किसी की बात या किसी के बाह्य आचरण को उसके छिपे हुए रहस्य का शीर्षक मत ठहराओ। इसलिए कि दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनको जुबान की तुतलाहट और लहजे की खराबी के कारण हम बेकार समझते हैं, लेकिन उसकी आत्मविस्मृति प्रतिभा का एक उजागर पहलू हो सकता है और उसका अंतःकरण ईश्वरी साक्षात्कार का स्थान। बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे की असुंदरता और उनकी गरीबी के कारण तुम उन्हें तुच्छ समझते हो, लेकिन वास्तव में वे धरती पर आकाश की कृपाओं में से एक अनुग्रह और लोगों में ईश्वर निर्मित शुभ आत्माओं में से एक हो सकते हैं। तुम एक ही दिन में आलीशान महल से प्रभावित हो जाते हो और एक गरीब, तंग और अंधेरे झोंपड़े को करुणा और प्यार की भावनाओं से देखते हो, लेकिन बाहरी स्थितियों से अपने को प्रभावित होने से रोकने की सामर्थ्य तुम में होती हो तो महल के देखने से रौब पैदा होने के बजाय तुम्हें अफसोस होता और करुणा के स्थान पर उस झोंपड़े का तेज तुम्हें प्रभावित कर देता। पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से कुछ स्वाभाविक कारणों से तंग आकर एक दूसरे से लड़ते हैं, मारपीट भी होती है, एक दूसरे को छोड़ भी जाते हैं, लेकिन अभी पूरा एक दिन भी बीतने नहीं पाता कि पति के परिवार वाले पत्नी के घर वालों से मिलते हैं। मुलम्बे के कारण चमकने वाले कुछ विचार एक दूसरे

0: सामने रखते हैं और वे एक मत हो जाते हैं। उसे मीठी मीठी बातों और दिल को नरम करने वाले उपदेशों से दोनों को चुप कराया जाता है। उनके मस्तिष्क को सुनहरी मिसालों और सुवचनों से राजी करा लिया जाता है, जिनके कारण उनके विचार नरम हो जाते हैं पर बदलते नहीं। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए उन दोनों में समझौता हो जाता है। उन दोनों की आत्माएं एक दूसरे से घृणा करती हैं, फिर भी एक ही घर में एक ही छत के नीचे अपनी इच्छा के विपरीत विरुद्ध जीवन बिताने पर वे विवश होती हैं। जब संबंधियों की पिलाई हुई नशा लाने वाली दवा की मदहोशी का असर समाप्त होता है, जिसका समाप्त होना अवश्यंभावी है, तो पुरुष फिर स्त्री से अपनी घृणा प्रकट करने लग जाता है। इसी प्रकार पत्नी भी अपनी नाराजगी को जाहिर करने लग जाती है। तब वही लोग जिन्होंने पहले उन दोनों को बेहोशी की नींद सुलाया था, फिर उनको बेहोश करने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रकार जिन्होंने पहले उनको ये सब बात बताई थी, वो फिर उसको बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने जब कभी कोई कड़वा प्याला पिया तो उसकी तलछट शहद की तरह मीठी निकली। मैं जब कभी किसी कठिन घाटी पर चढ़ा तो अंत में एक हरे भरे मैदान में जा पहुंचा। मैं जब भी शाम के धुधलके में किसी दोस्त को खो बैठा तो सुबह की रोशनी में उसे दोबारा पा लिया। कई बार पुण्य और उसके फल की इच्छा से मैंने अपने सुख दुखों को बहादुरी के दिखावे के पर्दे में छिपाया, मगर पर्दा उठते ही मुझे ऐसा लगा कि सारे कष्ट सुखों में और सारी विपदाएं संपदाओं में बदल गई हैं। इसी प्रकार कई बार मैंने अपने मित्र के बाहरी स्वभाव और आदतों को देखकर उसे अव्वल दर्जे का मूर्ख और बुद्धू समझा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मैंने अपने आप को क्रूर, अत्याचारी और उसे दयालु हकीम पाया। इसी तरह कई बार अहंकार के मद में मस्त होकर हम ये समझते रहे हैं कि हम भेड़ के कमजोर बच्चे हैं और हमारे साथी हिंस्र भेड़िया हैं, लेकिन जब वो नशा उतर जाता है तो हम देखते हैं कि हम दोनों मनुष्य ही हैं।
1: चंद्र बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आचार्य तुलसी के विचार। आलेख और वाचन डॉक्टर सत्यदेव आजाद का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल का

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में परोया था सुरेश वाटेकर और साथियों ने FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

से कुछ देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे आप। आज का विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य एवं सोइल हेल्थ कार्ड और वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। 7:00 हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का। 7:18 का समय होगा प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित करेंगे। सात बजकर 31 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रज की माटी तो ही प्रणाम, प्रहलाद मंदिर फालेन। ओबी आलेख प्रस्तुत सहयोग होगा रश्मि शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह। साथ ही आप सुन सकेंगे कुछ ब्रज लोकगीत। 8:30 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गीतों का। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ताक्रम में मुद्दे की बात, संत शिरोमणि तुलसीदास। वार्ताकार होंगे गोपाल चतुर्वेदी। 9:25 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय रहेगा विलुप्त होते गिद्ध। आलेख और वाचन होगा नेहा प्रधान का। नमस्कार 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

दस बजकर 30 मिनट पर हमारे श्रोता सुनेंगे संगीत रूपक गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सास धोए, लेखक रामनारायण अग्रवाल और प्रस्तुति होगी सुरेश गुप्ता की। 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12:30 का समय होगा ब्रजलोकगीत कार्यक्रम का। आज आप सुनेंगे संवेद स्वर में मल्हार।

1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम वनिता लोग। आज चर्चा के विषय रहेगा गोस्वामी तुलसीदास जयंती और विश्व मानवीय दिवस। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वरचित काव्य पाठ पावस। कवित्री होंगी मनु दीक्षित। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: आज हम मृदा स्वास्थ्य और सॉइल हेल्थ कार्ड विषय पर जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य आखिर है क्या। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का मिला जुला प्रभाव जो कि उत्पादकता के रूप में परिलक्षित होता है, उसे मृदा स्वास्थ्य कहते हैं। भूमि की उर्वरता जांचने तथा संतुलित एवं सूक्ष्म उर्वरक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए मृदा जांच अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में अधिकांश कृषक भाई अपने खेतों में उर्वरकों का उपयोग कमी के आधार पर नहीं बल्कि बाजार की उपलब्धता एवं अपनी क्रय शक्ति के आधार पर करते हैं। मृदा जांच के द्वारा इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। मृदा का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने के साथ साथ मृदा की भौतिक दशा, उसकी अम्लीयता या क्षारीयता, कार्बनिक पदार्थों तथा किसी फसल के लिए भूमि की उपयुक्तता का भी पता चलता है। आज के बदले परिवेश में जहां एक तरफ कृषि उत्पादन में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन भी आवश्यक हो गया है। मृदा परीक्षण के द्वारा उर्वरकता का मूल्यांकन एवं पोषण संबंधी समस्या का आकलन किया जाता है। मृदा के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में मृदा का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्षरण तथा मृदा प्रदूषण प्रमुख है। मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग के अतिरिक्त मृदा की कार्बनिक स्तर को सुधारना भी अति आवश्यक है, जो कि मिट्टी में जैविक पदार्थों के समावेश द्वारा ही संभव है। इसकी निहायत कमी आजकल महसूस की जा रही है। लगातार सघन खेती, कार्बनिक अंश की कमी के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है। मिट्टी में बहुपोषण तत्वों की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जल धारण क्षमता में कमी आदि के कारण इसका प्रबंधन जरूरी हो गया है। अब बात आती है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं। सर्वप्रथम मिट्टी की जांच कराएं तथा सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड में सिफारिश अनुसार बुवाई की जाने वाली फसल में देसी खाद व उर्वरक का प्रयोग करें। उर्वरकों का सही समय पर प्रयोग करें, सही तरीके से सिफारिश के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। इसके लिए अपने खेत को जानें, उसकी परिस्थिति को पहचानें। खेत में समय समय पर भ्रमण करें, उपजाऊ मिट्टी का कटाव रोकें, मृदा संरक्षण करें। फसल चक्र में दलहनी फसलों को महत्व दें, वर्ष में कम से कम एक दलहनी फसल अवश्य लें। खेत को यथासंभव समतल रखें, मिट्टी को भुरभुरा रखें, ढेले तोड़ें तथा मिट्टी को कठोर होने से बचाएं। 3 वर्ष में एक बार ढेंचा की हरी खाद करें। खेत पर ही कंपोस्ट खाद बनावें। प्रत्येक तिहाई भाग देसी खाद कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट द्वारा ही प्रदान करें। जीवाणु कल्चर से बीजोपचार करें। फसल अवशेषों को नहीं जलाएं बल्कि

0: खेत में ही दबाकर गलाएं। गर्मियों में खेत की जुताई करें, जुताई सुबह के समय व ढाल के विपरीत करें। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो तीन जुताई देसी हल या हैरो से काट कर पाटा लगवाएं। वर्षा के जल को खेत में ही संरक्षित करें। नमी संरक्षण हेतु मिट्टी की ऊपरी पपड़ी तोड़ें तथा समय पर निराई गुड़ाई करें। फसलों को संतुलित पोषण दें। पोषक तत्वों का एक तिहाई भाग देसी खाद या कंपोस्ट तथा शेष उर्वरकों द्वारा देने पर ही पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी होती है। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत नमूनों की जांच तथा कृषकों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण निशुल्क किया जा रहा है, अतः मिट्टी की जांच कराकर सॉयल हेल्थ कार्ड बनवावे एवं सिफारिश अनुसार खाद एवं उर्वरक का उपयोग कर उत्पादन व गुणवत्ता दोनों बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी। विषय था मृदा स्वास्थ्य एवं सॉयल हेल्थ कार्ड और वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अद्य सायं तमिलनाडु राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमंत्रणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमंत्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षा दलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः संगृहीताः। शिक्षा मन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जाले पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्म परीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्र परीक्षण प्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्त मन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य ऋण प्रदान क्षेत्रे तीव्र वृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु, पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म ब्रह्मचारी में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है आँखें।

रफी के गाए फिल कन्यादान के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता की सोच है तो उसे आप हासिल कर सकते हैं महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास, अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। और सर्वाइल्ड,
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। ड्यूटी भत्ता को 600 रुपए प्रतिदिन करने की हुई घोषणा। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन हुआ शुरू, 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हुई घोषणा। वाराणसी के छोटेलाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल शिवराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश का जारी किया अलर्ट। प्रदेश की गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में PRD जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। श्री योगी ने प्रांतीय रक्षक दल के सम्मेलन में जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 600 रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला PRD बैरक का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विपरीत परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों का सेवा भाव और अनुशासन प्रदेश की प्रगति तथा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है।
5: अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाई राइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में सम्पन्न हुआ है।
4: PRD जवानों के सम्मेलन में राज्य मंत्री राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि PRD जवान के सैनिक शांति, सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूपी जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। 5 दिवसीय इस निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को बढ़ाना और ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता

0: भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
1: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। श्री तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि उनकी शैली सबको साथ लेकर चलने की है और वे संगठन को मजबूत करने और पार्टी की योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव, एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। वो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। उधर महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत के निशानेबाज अनिल अखिल शिवराड़ और मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाह अरुमैना यागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित ये देश का 109वां पीएम दिव्याशा वयोश्री केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। गृह विभाग ने श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पहले गठित विशेष जांच दल SIT की फाइनल रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। SIT ने ये रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर पहले SIT का गठन गत 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में ये बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिन से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। उधर वर्षा होते रहने और बैराजों से पानी छोड़े जाने

0: के कारण प्रदेश के कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। अमरोहा और संभल में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वहां के ACP अतुल अंजान ने बताया कि
1: गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 4 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे।
0: मिर्जापुर में भारी वर्षा के कारण हुए जलजमाव से 7 गांव के प्रभावित होने की खबर है। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में पहुंचाने और आवश्यक राहत तथा बचाव सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। ड्यूटी भत्ता को 600 रुपए प्रतिदिन करने की हुई घोषणा। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हुई घोषणा। वाराणसी के छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल शिराड़ को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश का जारी किया अलर्ट। प्रदेश की गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

जी माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय मंजुल कुंज निकुंज नकी रसपुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की वंशी वटकी विपनेश्वर की सुखसाज की जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की गिरजेश्वर की गिरिराज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रजमंडल की ब्रजराज की जय। वंदे ब्रज बसंत राम। ब्रज की आप पावन धरा को नमन करें, वंदन करें और आनंद जब और अधिक बढ़ जावे जब ब्रज की लीलान को दर्शन करने को मिले। पूरब सो हल्की सी लालमा छाए रही है और रात को अंधेरो अब धीरे धीरे हट रहे हो है। पक्षियों की हलचल है रही है, पेड़न पर पंछी कुंजायमान कर रहे हैं। ऐसो सुंदर दिन को स्वागत करे ब्रज को माधुर। सुंदर सुंदर हवा चल रही है और मन को या छू करके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करे और कलीर अपनी अपनी पंखड़ियों को खोल रही हैं। कैसो आनंद छा रहे हो है। और हमारे ब्रजमंडल में तो या समय बड़ो आनंद। सावन की मल्हार झूला, श्याम सुंदर के अनेक प्रकार के झूला, पान के झूला, चांदी के, सोने के और ऐसी ऐसी पटली के दर्शन श्याम सुंदर के मंदिरन के हम करें ब्रजमंडल में। और ऐसी ही आज लीला आपको दर्शन करवा में ब्रज की माटी तो ही प्रणाम के अंतर्गत प्रहलाद मंदिर फालेन ओबी आलेख प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को और प्रस्तुत करता है ओपी सिंह। तो हफ्ते पहले आनंद लियो या प्रसंग को।

ब्रज की माटी तो ही प्रणाम। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं फालें, या अंक में हम आपको जानकारी देवे वाले हैं गांव फालें के प्रहलाद मंदिर के संदर्भ में। और यहां की होली विश्व प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी ते ही हमारे ब्रज मंडल में बड़े ही उत्साह के संग 40 दिवसीय होली महोत्सव की तैयारी आरंभ है जाए हैं, जहां ब्रज के मंदिर में फाग के रसियान की धुन में सभी श्रद्धालु आनंदित हो में हैं। वहीं दूसरी ओर कोसी ते करीब 58 किलोमीटर आगे ब्रज के फालें नामक ग्राम में होवे वाली अनूठी होली महोत्सव की तैयारी भी जोरन से आरंभ है जाए हैं। होली की पुरातन पारंपरिक कथा से प्रभावित फालें को यह अनूठा होली महोत्सव बुराई पे अच्छाई की विजय को प्रतीक है। मान्यता है कि गांव फालें के निकट ही साधु तप कर रहे हैं। बिनकू स्वप्न में डूंगर के पेड़ के नीचे एक मूर्ति दबी है वे की बात उनको दिखाई गई और या प्रकार

0: गांव के जो कौशिक परिवार के जो लोग हैं, बिन्ने यहां खुदाई करवाई, जामे भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की प्रतिमा निकली। प्रसन्न होए के तपस्वी साधु ने आशीर्वाद दियो के या परिवार को जो व्यक्ति शुद्ध मन ते पूजा करके धधकती होली की आग ते निकसेगो, वाके शरीर में स्वयं प्रहलाद जी विराजमान रह जाएंगे। आग की ऊष्मा को वापे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगो। या के बाद मंदिर बनवायो गयो और पास ही प्रहलाद कुंड को निर्माण करायो गयो। तब से आज तक प्रहलाद लीला को साकार करवे के काजे खालेन गांव में आसपास के 5 गामन की होली रखी जाए है। मंदिर पे पूजा अर्चना और कुंड में आचमन करवे के बाद 30 फुट व्यास की होली को अंतिम रूप दियो जाए है और या की ऊंचाई 10 से 15 फीट होए है। सामान्य होली दे या अलग तरीका दे बनाए जाए है। मान्यता के अनुसार कौशिक परिवार को यह सदस्य ही जलती भई होलिका में दे निकसवे को चमत्कार करे है। यह सदस्य फागुन शुक्ल एकादशी से ही व्रत को अनुसरण करके अन्न को परित्याग करने के बाद पूजा पे बैठ जाए है। पुरातन धार्मिक कथा के अनुसार देवकिन को राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही अत्याचारी और अधर्मी राजा और वाको पुत्र प्रहलाद पड़ोसी दयालु और धार्मिक हो। वह भगवान विष्णु को परम भक्त हो, क्योंकि हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी हो तो वाको यह पसंद ना हो कि वाको पुत्र भगवान को नाम ले। तो यह प्रकार राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के काजल योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठने को कही। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार होलिका को अग्नि जला नहीं सकी, अतः होलिका बालक प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके धधकती अग्नि में प्रवेश कर गई। होलिका के पास एक ऐसा दुशाला हो जहाँ पे अग्नि को प्रभाव ना पड़ सके हो, किंतु प्रभु की कृपा ऐसी भई कि होलिका को वो दुशाला उड़ गयो और प्रहलाद के ऊपर आए पड़ो। तो यह प्रकार होलिका तो जल गई, किंतु भक्ति की शक्ति के प्रताप के कारण प्रहलाद बच गए। परंतु होलिका रूपी पाप अग्नि बिन पवित्र लपटन में जल के स्वाहा है गई। फालिन को यह होली महोत्सव या एक पुरातन कथा को चरितार्थ करे है। फालिन में प्रहलाद को यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ एक कुंड है। हर वर्ष होलिका दहन के दिन प्रहलाद कुंड में स्नान करवे और वहाँ स्थित मंदिर में पूजा करवे के पश्चात गांव को एक पंडा भक्त प्रहलाद के आशीर्वाद से सज्जित माला को धारण करके होली की पवित्र अग्नि में प्रवेश करे है और धधकते अंगारन पे चल के सकुशल बाहरों निकसी आए है। रात्रि के समय यह पंडा होली की धधकती ज्वाला में प्रवेश करे है और वह समय सिगरों गांव ढोल नगाड़े और रसियान की आवाज से गुंजायमान है जाए है।
1: उनके बगल में श्री नरसिंह भगवान है, क्योंकि यहाँ स्वयं जो लीला करते हैं वो स्वयं दोनों प्रतिमा सतयुग की है। ऊपर में श्री विष्णु भगवान है, इधर में उनका बाल रूप है और इधर में श्री गणेश जी महाराज है। नीचे में प्रहलाद जी महाराज की कृपा से यहाँ जो होलिका दहन लीला होती है वो प्रहलाद जी महाराज बाल रूप में प्रकट होकर के स्वयं हमें आदेश देते है कि भाई तुमको ये एक ऐसा वचन निभाना है, उस वचन को हम देखिए निभाते हैं। एक लौंग बताशा और एक अंजलि भर पानी फिलहाल में मेरा व्रत चल रहा है। देखो मैं थोड़ा ही बोलते हुए आपसे थोड़ी ही बात करूंगा, क्योंकि आज मुझको 11-12 दिन हो गए हैं और मैं व्रत में हूँ और सुबह मेरा मनोकंडा है। अग्नि में से मेरा ही शरीर निकलेगा, मैं नहीं निकलूंगा, मेरा शरीर निकलेगा। वो पहला जी महाराज स्वयं निकलेंगे, बालकों को प्रकट होते हैं तब मेरे हाथ को पकड़ करके वो अग्नि में ले जाएंगे और बोली जाया होगी। देखो बोले नरसिंह भगवान की श्री प्रहलाद जी महाराज की। देखिए ये भूमि प्रहलाद जी महाराज की है, यहाँ प्रहलाद जी महाराज ने जन्म लिया है सतयुग में। कैसे कहते हैं कि वो तो मुल्तान के वासी थे हिरण्यकश्यप, यहाँ पर जन्म कैसे लिया?

कि हिरण्यकश्यप हमारे 84 वनों में आए हैं और 84 वनों में उन्होंने तपस्या की है, अगर आप बैठ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखो सभी बैठ जाए तो तपस्या 84 वनों में करने के लिए आए हैं, लेकिन तपस्या उनको नहीं करने दी। किसने नहीं करने दी? बृहस्पति गुरु ने। बृहस्पति गुरु ने तोते का रूप बनाया और तोते का रूप बना करके तब वो जिस वृक्ष के नीचे बैठते हिरण्यकश्यप उसी वृक्ष के ऊपर बृहस्पति गुरु बैठ जाते तोते का रूप बना करके और कहते नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ऐसे करके उनको तपस्या नहीं करने दी। जब नहीं करने दी है तो वापस गए हैं और वापस जाकर के माता का दुन उनको पूछा है कि स्वामी आप क्यों वापस आ गए, क्या कारण था? वन की देवी मैं इसलिए वापस आ गया कि वहां कोई तोता आ गया, उस तोते ने आकर के नारायण नारायण नारायण नारायण रट लगा दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। क्योंकि मेरे दुश्मन है, मैं उसको मानता नहीं क्योंकि उसने मेरे भाई को मार दिया। बताओ उसने बहुत मुझको यात्राएं दी गई हैं, इसलिए मैं उनको नहीं मानता हूँ। वो फिर भी मेरे काम वो मेरे दुश्मन का नाम लेता था, इसलिए मैंने तपस्या नहीं की। माता व्याधि ने सुबह से लेकर शाम तक उन पर 108 बार नाम लगा दिया नारायण नारायण, और जब नाम लगा दिया तो उसी दिन माता गर्भवती हो गई। और जब उसके बाद में हुआ ऐसा कि 3 महीने बाद हिरण्यकश्यप के मन में जागा कि महाराज शुक्राचार्य अपने गुरु को बुलाया और कह दिया कि महाराज मुझे तपस्या करनी है, मुझे जाना है। तो मधुर वन में मथुरा में जहाँ से आप आए हैं वहाँ उस भूमि में वट वृक्ष के नीचे ध्रुव टीला पर उन्होंने तपस्या करने के लिए बैठ गए। और जब बैठ गए तो तपस्या करने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया और मतलब पूर्ण रूप से तपस्या उन्होंने शुरू कर दी। जब करती है तपस्या तो बाद में फिर एक पंचायत लगाई सभी देवताओं ने मिलकर के, और पंचायत ऐसी लगाई कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं हिरण्यकश्यप ने सारे देवताओं की मूर्तियां तोड़वा दी, देवता कितनी बार पराजित कर दिए हिरण्यकश्यप ने, कहीं ऐसा ना हो एक और एक 11 हो जाए और बाप बेटे हम सभी को देव भूमि से निकाल दें। तो इसलिए कयादु का गर्भ करवा दो और कयादु को हरण कर लो। तो देखिए कयादु माता को हरण करने के लिए भेज दिया इंद्रदेव को, और जब इंद्रदेव को भेजा है तो इंद्रदेव ने मुल्तान से हरण कर लिया माता कयादु का, हरण कर लिया। विष्णु भगवान को क्षीर सागर से ईसाई में पता चला, और जैसे ही पता चला तो उन्होंने नारद जी महाराज को भेज दिया और कह दिया जाओ और मेरी भक्त को कयादु को बचाओ कि वो मेरी भक्त है और उनको जो कोप में पड़ रहा है वो भी मेरा भक्त है। ये देवऋषि नारद और सभी देवता जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो स्वयं जो भक्त बनेगा उसके लिए क्या कृति से पढ़ना, उसका गर्व क्यों कराना। तो देखिए हरि की ऐसी कृपा यहाँ हुई है कि यहाँ ला करके रखा है माता कयादु को नारद जी महाराज ने, और जब नारद जी महाराज ने रखा है तो विष्णु भगवान की देख रेख में रही है माता कयादु। जब रही है तो 6 महीने बाद प्रहलाद जी महाराज की प्रगति हो गई है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की, श्री नरसिंह भगवान की। फिर यहाँ से लेकर के चले गए, जब प्रहलाद जी महाराज यहाँ हो गए तो हिरण्यकश्यप की तपस्या तुड़वा दी गई और यहाँ पर आ गए और यहाँ से प्रहलाद जी महाराज को और माता कयादु को ले गए। जब प्रहलाद जी महाराज ने फिर वहाँ भक्ति शुरू कर दी और ऐसी कृपा भगवान की हुई कि नारायण नारायण वो जपने लगे स्वयं, ऐसी कृपाएं दी गई कि एक बार कि वो एक घर के यहाँ गए जो उनके प्रजा में एक कुमार का घर था, उस कुमार के घर चले गए और जैसे ही जाकर के देखा है तो कुमारी बहुत जोर से विलाप कर रही थी और करते करते कह रही थी कि नारायण बचाओ हरि बचाओ नारायण बचाओ हरि बचाओ, तो ऐसे ऐसे कह रही थी वो। तो उन्होंने जाकर के पूछ लिया कि माँ आप क्यों विलाप कर रही है, क्या कारण है मेरे पिताजी के राज में ऐसा आपको कौन सा कष्टान पड़ा है जो कि आप इतनी जोर जोर से रो रही है। वन के कुमारों दिक्कत कोई नहीं है, पर लेकिन ऐसा हुआ है कि हमारे घर में कोई बिल्ली आई और वो अपने मुंह में 2 बच्चों को भर करके ले आई और जैसे ला करके उन्होंने ढटका है वो छोड़ करके चली गई। आज 3 दिन हो गए कुमारो और मैंने उन बच्चों को कच्चे घड़े में रख दिया और रख करके मैं तो इधर उधर चली गई कुछ काम के लिए, मेरे बच्चों ने आभार लगा दिया यानी अग्नि लगा दी, और जब अग्नि लगा दी तो उस मटके को उठा करके उस अग्नि में रख दिया जिसमें वो बच्चे थे। तो मैं बेटा कुमार इसलिए रो रही हूँ कि भगवान उनको बचाए नारायण उनको बचाए, तो इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं कि मेरा बुढ़ापा है कि मैं उस अग्नि में जाकर के उनको हटा लूं और मटकों को अग्नि को मैं शांत कर दूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं नारायण से ही कह सकती हूँ और बाकी मुझको कोई भी वो नहीं है। तो देखिए ऐसे प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया छोटे से मुख से, माँ अगर वो बच्चे मर गए ना तो मैं आपको पूरे परिवार को कुल में तलवा दूंगा, आप याद रखना। तो प्रहलाद जी महाराज लेके चले आए हैं, 17-18 दिन तक माता ने ना कुछ खाया ना पिया, एक ही स्थान पर बैठी रही और नारायण नारायण जपती रही। जब नारायण नारायण जपती रही तो ऐसा

किया के मतलब जो कोई जवाब नहीं, उस अग्नि में से इतनी भीषण अग्नि में सारे मटके पक गए, लेकिन जिस मटके वो बच्चे थे वो मटका कच्चा के कच्चा रह गया। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे मटका कच्चा रह गया तो वहाँ महाराज महाराज पहुंचे हैं, पहुंच करके देखा है कि माँ क्या हुआ हम बच्चों का। बोल बेटा हरि की इतनी ताकत है कि देख लो इतनी भीषण अग्नि में से वो बच्चे तो क्या मटका भी कच्चा रह गया है। तो जैसे मटका कच्चा रहा है तो महाराज जी महाराज उसके चरणों में साष्टांग नमस्कार कर दिया और कह दिया कि माँ जिस भक्ति को आपने किया है वही भक्ति मैं करना चाहता हूँ, मुझे भी वही भक्ति करनी है। वन के बेटा अगर तुमको वो भक्ति करनी है तो हरि का नाम लो। तो देखिए हरि का नाम लेने लगे और उसी दिन से हरि का नाम प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यप ने बहुत तप उनको समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। कहते हैं कि पिताजी आप सिर्फ पिता है लेकिन वो परम पिता है, आपके भी पिता है, मैं उनका नाम लूंगा, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। तो ऐसे कहते हुए उसके बाद में फिर करते रहे गुरुकुल में पहुंचा दिया, वहां भी नहीं माने। मास्टर ने बहुत उनको यात्राएं दी गई पर फिर भी नहीं माने। सरपुण्य में डाल दिया वहां भी नहीं माने। कारागार में डलवा दिया वहां भी नहीं माने। गर्म खम्भे से चिपकवा दिया वहां भी नहीं माने। गर्म कढ़ा में डलवा दिया वहां भी पहला जी महाराज नहीं माने। देखो कितनी उनको कठिनाई दी गई पर लेकिन मेरे पहला जी महाराज ने हरि का नाम लेना नहीं बंद किया। देखो ऐसी कृपा हुई कि लास्ट में उनकी बहन झुंडा थी जिनको होलका जी बोलते हैं। होलका जी ने कहा कि भाई भैया मुझको वरदान है सूर्यदेव जी का, उस वरदान से कि मुझको ऐसा वरदान है, ऐसा एक शीतल चीज मेरे पास है कि मैं उससे जल नहीं सकती और दूसरा अगर कोई मेरे साथ हो तो मैं उसको जला दूंगी मार दूंगी। तो बहन मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इस पुत्र को ले जाइए, इस पुत्र को ले जाकर के ये बड़ा छलिया है, जहां मैं इसको जान डालता हूँ भेजता हूँ ये वहीं से बच करके चला आता है, कितना बड़ा जादूगर है, आप ले जाइए इसे। तो देखिए पहला जी महाराज से पूछा गया कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है पहला दिन तुम से, अब तुम्हारा अंतिम दिन है और आप बता दीजिए तुम्हारी क्या इच्छा है। वन के बुआ जी मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ है, आप मुझको वहीं जलाना, वहीं मेरे भगवान के दर्शन मुझको होंगे। तो देखिए इस भूमि में जब लेकर के आए हैं तो यहाँ होलका जी ने 15 फुट ऊंची अग्नि लगवाई है और अग्नि लगा करके अग्नि कुंड बनवाया है और उस पर बैठ गई है। 15 फुट ऊंचाई में और 50 फुट लंबाई में और 50 फुट चौड़ाई में जब अग्नि कुंड बनवाया और बनवा करके उसमें बैठ गई और पहला जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे बिठा लिया और शीतल जी ने अपने ऊपर ओढ़ लिया और पहला जी ऊपर कुछ नहीं था। जब नहीं था तो श्री हरि भगवान विष्णु को पता चला और माता लक्ष्मी को पता चल गया। तो माता लक्ष्मी पैर दबा रही तो विष्णु भगवान को दबाते दबाते पैर जैसे उनका पैर एकदम से पैर जैसे गर्म हुआ है हरि जी को, उनकी जो अग्नि थी यहाँ अग्नि जो चेत रही थी उस अग्नि को अपने शरीर में खींच रहे थे भगवान श्री हरि विष्णु। तो जब शरीर में खींच रहे थे तो माता ने एकदम से उठा करके बोला कि महाराज इसको क्या हो रहा है, नारायण जी इसको क्या हो रहा है। तो नारद जी महाराज प्रकट हो गए और नारद जी महाराज ने पूछा करके कहा कि माँ उनके भक्त पर बहुत बड़ी भीड़ पड़ी हुई है इसलिए वो उस अग्नि को खींच रहे हैं कि कौन से भक्त पर, वो पहला पर बहुत ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है, वो अग्नि में बैठा रखा है होलका जी ने। और जैसे ये बात सुनी कि बचाओ मेरे पुत्र को, बचाओ मेरे बेटे को, जाओ नारद जी कुछ करो, तो नारद जी महाराज ने याद किया है पवन देव को और पवन देव जी यहाँ आए हैं और आकर के पवन देव जी ने बड़े विवेक के साथ अंदर अग्नि में प्रवेश किया है और करते ही अग्नि में प्रवेश शीतल चीर जो उनके पास था होलका जी के पास उस शीतल चीर को ऐसे उठाया पीछे से और पहला जी को बढ़ाल दिया और पहला जी यहाँ बच गया और होलका जी का ध्यान हो गया। देखिए उस दिन से पहला जी महाराज के सामने स्वयं विष्णु भगवान हरि प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे पुत्र आज मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि आज तक मेरा ऐसा कोई भक्त पैदा नहीं हुआ कि अपने आप को जिसने अग्नि में भी झोंक दिया कि मुझे विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे आप अग्नि में डाल दीजिए बुआ जी, चलो मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने पहला जी महाराज ने कहा कि स्वामी इसमें मेरी बुआ जी की कोई गलती नहीं है और मेरी बुआ जी की जब गलती नहीं है तो उनको कष्ट नहीं दिया जाए, उनको मारा नहीं जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बुआ जी की सदियों तक पूजा हो। तो ये वो गांव है जो कि होलका जी की यहाँ पूजा होती है और पहला जी महाराज आज भी उसी बाल रूप में यहाँ प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के हमको आदेश देते हैं कि भाई तुमको वो भूमिका निभानी है। और जैसे ही हम भूमिका निभाते हैं देखिए मुझको 5 वर्ष हो गए हैं, मेरा स्वप्न मुकुंडा है। ऐसे ही अग्नि से मेरे बुजुर्ग सभी निकलते गए हैं, अग्नि में से हम निकलते आए हैं, हमारे जितने भी वंश रहा है परिवार रहा है सभी बिलोंग करता है तो अग्नि से होलका दहन से, हम होलका दहन से निकलते हैं और होलका दहन से निकलने के पूर्व में एक अंजलि भर पानी और एक लोक बतासे से हम व्रत करते हैं 40 दिन। हमारी एक अखंडता है कि मंदिर को छोड़कर के हम कहीं नहीं जाते।

0: में हमेशा 24 घंटे यहाँ रहते हैं 40 दिन तक, और जब अपना नियम व्रत पूरा करते हैं, करते ही व्रत पूरा स्वयं पैलाची महाराज बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं और अग्नि बाल लगवा देते हैं, और लगवाते ही अग्नि कह देते हैं कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तो पैलाची महाराज हमारे हाथ को पकड़ते ही और यहाँ से ले जाते हैं और ले जा करके अग्नि में प्रवेश करा देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
1: आपने आनंद लियो प्रहलाद मंदिर फालन को, वो भी आलेख और सहयोग हो रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता है ओपी सिंह। भैया हमारे ब्रज में तो बहुत आनंद है, और यह समय श्रावण मास में देखो माई सावन दूल्हे आयो, चार मास की लगन लिखायो, बदरन अंबर छायो, पिजुरी चमके बगुला बराती, कोयल शब्द सुनायो, तादर मोर पपैया बोले, इंद्र निशान बजायो, हरी हरी भूमि पे इंद्र बधूसी, रंग बिछोना बिछायो, देखो माई सावन तूले आयो। आनंद लें या सावन के ब्रज लोकगीत को।

सावन आयो सुगढ़ सुहाव नोजी, संभेश्वर में गाए या ब्रजलोकगीत के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस PNG कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा PNG कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और PNG नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू PNG कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
6: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति

0: परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही

0: सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और महभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है।

0: vocational education third language must for class 9 from the current academic session, writes the Times of India about Delhi government's revised class 9 examination and promotion policy. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satender Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: कौन आएंगे? हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: और आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमे। पेश है ये पहला नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म उमराव जान से। आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की।

0: आप सुन रहे हैं छत्तरपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमे आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।
1: एंटरटेनमेंट की तरफ से पैदा होता है,

भी आपने सुना फिल्म प्रेम गीत में जगजीत सिंह को, और आइए सुनते हैं परवीन सुल्ताना को, फिल्म का नाम है कुदरत।

जी सिंह चित्रा सिंह को अभी आपने सुना फिल्म साथ साथ में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफीक और साथियों को। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

0: पंकज उदास के गाए फिल्म साजन के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास हिंदी वार्ता। वार्ताकार है गोपाल चतुर्वेदी।
1: श्रोमणी विश्व कवि श्री रामचरित मानस के प्रणेता व अनन्य राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में न केवल अपने देश की अपित समूचे विश्व की अमूल्य निधि हैं, जिन पर आगामी पीढ़ियां सदैव गर्व करती रहेंगी। उनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश जनपद के राजापुर ग्राम में, जो कि अब चित्रकूट जनपद में है, श्रावण शुक्ला सप्तमी संबत 1554 को एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में दिनांक 11 अगस्त 1497 शुक्रवार को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे व माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी था। इनका मूल नाम रामबोला दुबे था। उनके जन्म काल के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है, 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। जब वे पैदा हुए तब वे बिल्कुल भी नहीं रोए। उनका जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के बाद हुआ था। जन्म के समय वे 5 वर्ष के बालक जैसे थे। साथ ही उनके मुंह में 32 दांत थे। साथ ही उन्होंने अपने जन्म के समय राम शब्द का उच्चारण भी किया। उनके जन्म के इन विचित्र लक्षणों व अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अमंगलकारी मानते हुए त्याग दिया। अतः इनकी शैशवावस्था अत्यंत कष्टमय स्थितियों में व्यतीत हुई। भगवत कृपा से कुछ समय में ही इन्हें संत नरहरिदास महाराज का पावन सानिध्य मिल गया। उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र सोरों में रखकर शिक्षा व दीक्षा प्रदान कर तुलसीदास नाम प्रदान किया। उन्होंने ही इनको हिंदी व संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनाया। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गुरुदेव के आदेश पर ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी संबत 1583 को रत्नावली नामक कन्या के साथ विवाह भी किया, जिससे उन्हें एक सुपुत्र की प्राप्ति भी हुई, जिसका के नाम तारक था। परंतु इसकी बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार वो उनकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई। इस पर उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ, जिससे वे रात्र में ही नदी पार कर अपनी पत्नी के पास जा पहुंचे। इस पर उनकी पत्नी ने इन पर व्यंग बाणों की बौछार करते हुए इनसे यह कहा, अस्थि चर्म मय देव मम तामे ऐसी प्रीत होती जो अस रामसों होत न तब भव भीत। तुलसीदास जी को यह सब सुनकर वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना घर व पत्नी आदि सभी को त्याग दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णतः भगवान श्री राम की भक्ति को अपना लिया। बाद को वे लगभग 40 वर्षों तक देश के विभिन्न स्थानों पर पद यात्राएं करते हुए धर्म प्रचार करते रहे। कालांतर में इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः चित्रकूट अयोध्या व वाराणसी रहा। वे भिक्षाटन कर अपना पालन पोषण किया करते थे। इसके बावजूद भी वे संतों निर्धनों व विकलांगों आदि के भोजन की भी किसी न किसी प्रकार व्यवस्था करते थे। उन्होंने कभी भी राज्याश्रय को नहीं स्वीकारा। उनका निधन उनके जन्म की ही तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी गुरुवार संबत 1680 दिनांक 30 अगस्त सन

1623 को वाराणसी के 80 घाट पर हो गया, जो कि अब तुलसी घाट के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु के समय भी उनके मुख से उनके जन्म की ही भांत राम शब्द निकला। उन्होंने 126 वर्ष तक का यशस्वी जीवन जिया, क्योंकि प्राचीन काल में महापुरुषों की आयु अत्यधिक हुआ करती थी। उनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है, संबत 1680 असी गंग के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी को गोस्वामी अभिनव वाल्मीक व रसिक चूड़ामणि आदि की उपाधियाँ उनके सम्मान स्वरूप प्राप्त हुई थीं। उनको आदि कवि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीक का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के अवधि भाषा में विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस व हनुमान चालीसा रचना कर भगवान श्रीराम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाया। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली एवं अन्य लगभग 20 ग्रंथ इसके अलावा भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हिंदू धर्म में अपना एक अलग विशेष स्थान रखते थे और आज भी रखते हैं। उन्होंने लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, सुरठा, कवित व सवैया आदि में काव्य रचनाएं की। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों की भरमार है। वे प्रबंध शैली व मुक्तक शैली में काव्य रचना करने में माहिर थे। उन्हें लोक शिरोमणि व हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा भगवान श्री राम के महत्व को संपूर्ण विश्व में प्रदर्शित किया। उनके काव्य में निष्काम दास्य भाव की भक्ति है, उसमें सांसारिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। उनकी राम भक्ति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में भक्ति रस का जो पूर्ण परिपाक है, वैसा अन्यत्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। प्रख्यात संत नाभादास महाराज ने तुलसीदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रख्यात इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा समाज सुधारक माना है। वस्तुतः उनके ग्रंथ समस्त मानव जाति को भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन धन्य बनाने की सीख देते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण काव्य मानव मूल्यों को समाविष्ट किए हुए है। उनके द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी पहुंच उसकी उपादेयता के चलते राजमहल से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक है। इसीलिए उनके काव्य की अमृतवाणी नित्य घर घर में मुखरित होती है और हो रही है। उनकी अमर कहानी युगों युगों तक गाई जाए, वे मानवता के उद्धारक थे। गोस्वामी तुलसीदास का मानना था कि ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सदकार्य, सत्यता व अस्तिकता ऐसे 7 गुण हैं जो सभी को प्रत्येक विपत्ति से बचा सकते हैं। इसीलिए हम सभी को उन्हें ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसे एक। उन्होंने यह भी लिखा है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहानी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अर्थात ईश्वर पर भरोसा रखिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए। यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वह होकर ही रहेगा। वे यह भी लिखते हैं, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संयोग। अर्थात इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, हर किसी से अच्छी तरह मिलिए और बात कीजिए। जिस प्रकार नाव नदी से मित्रता कर आसानी से उसे पार कर लेती है, इस तरह उन्होंने अपने काव्य में तमाम जनोपयोगी जीवन सूत्र दिए हैं, जिनको ग्रहण कर अनेकों कष्टों से मुक्त हुआ जा सकता है। हिंदी भक्त साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास ही एकमात्र ऐसे संत कवि हैं जिन पर समूचे विश्व में तमाम विश्वविद्यालयों में विभिन्न भाषाओं में 1000 से भी अधिक शोध कार्य हुए हैं। साथ ही उनके द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस ग्रंथ समूचे विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। तुलसीदास जी ने अपने समय की राजनीति व सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहने वाले कवि थे। उनके द्वारा लिखित भक्ति साहित्य का उद्देश्य भजन

0: कीर्तन कतई नहीं है, यह तो शताब्दियों पूर्व से चला आ रहा है। भजन कीर्तन से व्यक्ति को आध्यात्मिक संतोष तो मिल सकता है, पर उससे सामाजिक अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी लोक मंगल के कवि थे। उन्होंने सामाजिक विद्रूपताओं पर न केवल लिखा अपितु उनका अपने व्यक्तिगत जीवन में पुरजोर विरोध भी किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी रामकथा को लोक भाषा में लिखकर जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने न कभी शिष्य परंपरा चलाई और न कभी किसी संप्रदाय का पोषण किया। उन्होंने आजीवन अपने को किसी का गुरु न मानकर राम भक्त माना। वे मानव मानव में भेद नहीं मानते थे। सभी जात संप्रदाय के व्यक्ति उनसे आदर व प्रेम पाते थे। हिंदी साहित्य के प्रख्यात अध्येता डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, दीन दुखी तथा दलितों के प्रति उनके मन में पूर्ण सहानुभूति थी। वे सही अर्थों में समाज सुधारक थे। उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था समाज में समन्वय स्थापित करना। इसीलिए उन्होंने स्वरचित श्री रामचरित मानस ग्रंथ में समन्वय दार्शनिक समन्वय द्वैत व विशिष्टाद्वैत समन्वय भक्ति ज्ञान कर्म का समन्वय सामाजिक समन्वय व साहित्यिक समन्वय स्थापित किया। साथ ही सामाजिक पुनर्जागरण के भी अनेकों ठोस कार्य किए। रासलीलाओं का मंचन, हनुमंत पूजा व मानस प्रवचन आदि का शुभारंभ उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। वस्तुतः उन्होंने भक्ति साहित्य की न केवल अनेक ग्रंथ लेकर अपित देश व समाज की उन्नति हेतु अनेकों ठोस कार्य किए। वे सही अर्थों में समाज व राष्ट्र के सच्चे सेवक व उद्धारक थे। इसीलिए भारत सरकार ने उनकी पंच शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उनके जन्म के 500 वर्ष पूर्ण होने पर अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया था। भौतिकता व यांत्रिकता के युग में डूबे यदि हम सभी लोग उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारे समाज व देश की तमाम बुराइयों का खात्मा हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता संत शिरोमणि तुलसीदास। वार्ताकार थे गोपाल चतुर्वेदी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्रा का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भव्य तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं पूरे जनपद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14 अगस्त को शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने संस्कृत विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना का संकल्प लेकर कार्य करने से भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा
2: वह विभाजन की जो विभीषिका थी उसका स्मरण वर्तमान पीढ़ी को रहे, आने वाली पीढ़ियों को रहे। अपने अमर शहीदों को स्मरण रखते हुए और देश की एकता के लिए अपने को समर्पित कर।
1: प्रयागराज के फाफामऊ में प्रतियोगी परीक्षा और संस्थागत शिक्षण में छात्रों की होने वाली समस्याओं को लेकर आयोजित छात्रों की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के सुझाव सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें पूरी गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा कानून अब बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से किए गए वादों के अनुरूप परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्र अपनी समस्याओं एवं सुझाव लिखित रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार प्रत्येक सुझाव का अध्ययन कर उसके समाधान का प्रयास करेगी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से प्रयागराज में उप निदेशक जागृति पांडे के निर्देशन में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में लगाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर नशा मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर विभिन्न नशा मुक्त गतिविधियों का आयोजन करने की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता एवं प्रतिभा के माध्यम से नशा मुक्त भारत का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विजयी प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रयागराज द्वारा खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भगवतपुर ब्लॉक सदर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महापौर उमेश गणेश चंद्र केसरवानी ने खादी के महत्व के बारे में मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रयागराज में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एवं किशोरियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने HPV जागरूकता एवं टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि 14-15 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बालिकाओं एवं HPV टीकाकरण समय से अवश्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि HPV टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 46 अभ्यर्थियों का

0: चयन किया गया। रोजगार मेले में कुल 89 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
2: मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 682 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर संकट का माहौल था, जबकि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य की छवि से निकलकर राजस्व प्लस राज बनने और डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मैनपुरी और इटावा के विकास को देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। जिले में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी भी सक्रिय हैं। उन्होंने 24 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन बहुउद्देशीय हॉल, प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र तथा 38 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था CNDS के अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह परिसर भविष्य में जिले की सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। परिसर में पार्किंग, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र, विद्युत जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। भोगांव में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। जिलाधिकारी ने पैमाइश से जुड़े विवादों में नियमानुसार धारा 24 के तहत कार्रवाई करने और दोनों पक्षों की सहमति होने पर तत्काल पैमाइश कराने के निर्देश दिए हैं। पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के साथ चक मार्गों, तालाबों, पश्चर और अन्य सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराने को कहा है। मिशन समाधान के तहत खाली कराई गई ग्राम सभा की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखने तथा दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। पेंशन, कन्या सुमंगला योजना तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने में अब आम जनता की राय को भी महत्व दिया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले चरण का रोड मैप तैयार करने के लिए पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार ने मंडली उप निदेशकों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को सुझाव देने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और फिकल स्लज मैनेजमेंट जैसे कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। अब अगले चरण की योजना में जनता की जरूरतों और अनुभवों को शामिल करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। इससे ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाने में की दिशा में नई पहल की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में मैनपुरी के लिए गौरव की खबर है। सुदित ग्लोबल एकेडमी के कक्षा 12 के छात्र पीयूष का भारत सरकार की प्रेरणा परियोजना के लिए चयन हुआ है। प्रत्येक जिले से एक छात्र और एक छात्रा के चयन की व्यवस्था के तहत चयनित पीयूष गुजरात के बड़नगर का भ्रमण करेंगे। वे उस विद्यालय का भी भ्रमण करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा प्राप्त की थी। यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों को समझने का अवसर मिलेगा। पीयूष के चयन पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जिले के प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर राममोहन कहते हैं,
3: प्रेरणा परियोजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व नवाचार तथा राष्ट्र निर्माण की भावना से परिचित कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर की यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव सिद्ध होगी।
2: युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सिविल सेवा, PCS और SSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य एवं अनुभवी अतिथि व्याख्याताओं का चयन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के अनुसार प्रत्येक 90 मिनट के व्याख्यान के लिए 2000 रुपए मानदेय दिया जाएगा और अधिकतम 30 व्याख्यान प्रतिमाह अनुमन्य होंगे। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 18 अगस्त को पूर्वान 11 बजे तक आवेदन जमा कर उसी दिन विकास भवन के अम्बेडकर सभागार में आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज।

0: अंग। जिले की हेल्प
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
3: आए दिन हमारे गांव और कस्बों के आसपास मृत मवेशी दुर्गंध फैलाकर वातावरण दूषित करते रहते हैं। इस कारण कई बीमारियों का खतरा हम सभी पर मंडराता रहता है। सोचने की बात यह है कि इन मृत मवेशियों को खाने वाले गिद्ध कहाँ गए? गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे देश में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन पहले 2 प्रजातियां व्हाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल वल्चर संकटग्रस्त पक्षियों की सूची में शामिल की गईं। गिद्ध हमारी जीव खाद्य श्रृंखला के अंतिम उपभोक्ता हैं। अतः मृत जीवों को अपना आहार बनाना उनकी विवशता भी है और जरूरत भी। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बताया है कि दुधारू पालतू मवेशियों को दी जाने वाली कुछ दवाओं के कारण ही गिद्ध मर रहे हैं, क्योंकि जब गिद्ध इन प्रदूषित मृत मवेशियों को खाते हैं तो सारे प्रदूषित तत्व गिद्ध के शरीर में पहुंच जाते हैं। यही नहीं, फसलों में कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग भी इनके मरने का एक बहुत बड़ा कारण है। सोचिए कैसे? दोस्तों, कीटनाशकों का उपयोग करने पर यह एक से दूसरे जीव में पहुंच जाते हैं और इनकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। गिद्ध तक पहुंचते पहुंचते यह जहर बन जाते हैं और परिणाम सामने है। कई वैज्ञानिक वायरस संक्रमण को गिद्धों की मृत्यु का कारण मानते हैं। इस बीमारी से गिद्ध पेड़ों पर गर्दन लटकाकर बैठते हैं और 30 से 35 दिनों में मर जाते हैं। हालांकि इस वायरस की खोज जारी है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करने होंगे कि यह जाति बची रहे। गिद्धों के आवासीय स्थलों को नष्ट कर हम अपने आवास बना रहे हैं। दरअसल गिद्धों का आकार बड़ा होता है, इसलिए उड़ते समय उन्हें ऊंचे विश्राम स्थल की जरूरत होती है। चौड़े व मजबूत मचान वाले स्थल उनके प्रसव के लिए आवश्यक हैं। इन दोनों में से किसी के भी अभाव में यह वंश वृद्धि नहीं कर पाते। दोस्तों, हम बरगद, उमर, पीपल, इमली, सागौन, अर्जुन, महुआ जैसे ऊंचे, लंबे और चौड़े पेड़ काट देते हैं तो गिद्धों का आवास और आहार नष्ट हो जाता है। कुछ वर्ष पूर्व बारा के शाहबाद में इनके घोंसले देखे गए थे। हमें इनके आवास स्थलों को बचाना होगा, अन्यथा 1-2 वर्षों बाद यह प्रजाति सिर्फ किताबों में ही नाम बनकर रह जाएगी। यही नहीं, गिद्धों की तस्करी को भी रोकना होगा। इन्हें मारकर विदेशों में बेचा जा रहा है। गिद्ध न सिर्फ जिंदा रहकर वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग देते हैं, बल्कि इनके मरने के बाद औषधि निर्माण, मनमोहक स्वाद और तांत्रिक क्रियाओं में भी इनका उपयोग होता है। कुछ लोग स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए इन्हें मारकर बेच देते हैं। इन्हें बचाने के लिए हमें गांव व कस्बों के पास इनके आवास स्थल बनाने होंगे। सर्वे बताते हैं कि गांव के समीप बड़े वृक्षों पर इनके घोंसले पाए गए हैं। संभवतः भोजन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही गिद्धों ने ऐसा किया होगा। एक बात और गौरतलब है कि हालांकि गिद्ध समूह में रहते हैं, परंतु एक प्रसव में मात्र एक ही अंडा देते हैं। इसलिए जिस गति से यह मरते हैं, उतनी तेजी से इनकी वंश वृद्धि असंभव है। गिद्ध मरे हुए मवेशियों को खाते हैं, उन्हें खाते समय वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाते हैं। यदि हम इन जानवरों के शवों को

ऐसी जगह डालें जहां सड़क व रेल न निकलती हो तो इन्हें बचाने में सहयोग मिल सकता है। यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गिद्धों का अस्तित्व लुप्त हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था विलुप्त होते गिद्ध, आलेख और वाचन नेहा प्रधान का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं ब्रज तर्पण कार्यक्रम।

शिक्षा सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, दिन की शुरुआत अगर अच्छी अच्छी बातों के साथ, सकारात्मक बातों के साथ की जाए तो वास्तव में दिन अच्छा गुजरता है और बल्कि इसका हमारे पूरे जीवन पर भी बड़ा गहरा असर होता है। तो आपको मालूम है कि जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत अच्छे और प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं, तो साथियों आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे व्यक्ति के एक ऐसे गुण की जो रिश्तों को टूटने से बचाता है, मन को शांति देता है और इंसान को महान बनाता है, और वो गुण हैं क्षमा मांगना और क्षमा करना। क्योंकि इंसान से गलती होना तो स्वाभाविक है, कभी कभी हम आवेश में आकर या भूलवश ना चाहते हुए भी किसी से कुछ ऐसा बोल जाते हैं और ऐसी कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, लेकिन अपनी गलती के बाद मुझे माफ़ कर दीजिए ये कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि क्षमा मांगने के लिए अहंकार नहीं बल्कि साहस चाहिए, और दूसरी ओर किसी को दिल से माफ़ कर देना भी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है उसे मन में बड़ी शांति मिलती है और उसके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। क्योंकि जहाँ क्षमा होती है वहाँ रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को दिल में रख लेते हैं, गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना हमें अंदर ही अंदर परेशान करती है, लेकिन क्षमा मन को शांति देती है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम गलत बात को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन को उस कड़वाहट से मुक्त कर दें। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता और क्षमा तो शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। तो हम भी इस बात को अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करें कि अगर हमसे कोई गलती हो तो हम बिना संकोच के क्षमा मांग लें, और यदि किसी से भूल हो जाए तो एक बड़े दिल के साथ उसे माफ़ कर दें। क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई बदला नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है, इस बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, गलती करके झुक गया वही बड़ा इंसान, क्षमा मांगना सीख लो बढ़े तभी सम्मान।

0: श्रोताओं, स्वस्थ और सुपोषित बचपन किसी भी देश या समाज की नींव है। यदि बच्चे कुपोषित होते हैं तो इसका सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसी क्रम में कुपोषण को दूर करने के लिए संभव अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा श्री योगेंद्र कुमार सिंह। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: धन्यवाद।
0: आज हम संभव अभियान को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि संभव अभियान का मतलब है कि कुपोषण को खत्म करना।

0: असंभव नहीं, संभव है। कुपोषण को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है और उस पहल का ये छठवां अभियान है जो प्रत्येक माह जुलाई से सितंबर तक किया जाता है और इसमें सितंबर माह में पोषण माह की थीम भी रहती है, जिसमें पोषण माह में विशेष अभियान चलाकर हम विभागीय सेवाओं को देखते हैं। तो संभव अभियान से हम जो भी कुपोषित बच्चे हमारे, चाहे वो हमारी किशोरियाँ हैं, माताएँ हैं, लो बर्थ बेबी हैं या 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो उन्हें हम विशेष अभियान चलाकर उनके कुपोषण को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग का समन्वय रहता है। इन तीनों के माध्यम से ही हम संभव अभियान के माध्यम से कुपोषण को दूर करने का प्रयास करते हैं।
1: जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी किस आधार पर पहचान की जाती है?
0: कुपोषित बच्चों की पहचान उनका हम वजन और लंबाई लेकर जो हमारा इंडिकेटर है उसके आधार पर करते हैं। जो भी बच्चे 3ST की श्रेणी में आते हैं वो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, और जिनमें जो चिकित्सीय जटिलताओं से युक्त बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम NRC में संदर्भन करते हैं। अन्य बच्चे जो चिकित्सीय समस्याओं से ग्रस्त नहीं हैं उनका परिवार में ही रहकर प्रबंधन किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य विभाग से 6 प्रकार की दवाएं दी जाती हैं तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से उनके यहाँ प्रति सप्ताह गृह भ्रमण कराते हुए एवं उन्हें पोषण परामर्श देते हुए उनका नियमित वजन एवं वृद्धि की निगरानी की जाती है और उन्हें विभाग द्वारा पोषाहार प्रदान किया जाता है तथा पोषण परामर्श भी किया जाता है, जिसके माध्यम से हम उनका कुपोषण दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मथुरा में इसके लिए NGO भी काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा बच्चों को मूंगफली का दलिया दिया जाता है। जो हमारे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर आते हैं उन्हें अक्षय पात्र के माध्यम से मिड डे मील का खाना भी दिया जा रहा है।
1: जैसा कि आपने अभी 2 कुपोषित श्रेणियों का जिक्र किया, सैम और मैम, इस तरह के बच्चों के लिए किस प्रकार की विशेष व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है?
0: इसमें जो हमारे सैम श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए विभाग से अतिरिक्त पोषाहार की मात्रा दी जाती है। उनके लिए सामान्य बच्चों की अपेक्षा डबल पोषाहार दिया जाता है। साथ ही उनके यहाँ प्रति सप्ताह गृह भ्रमण किया जाता है, पोषण परामर्श दिया जाता है। जो गंभीर कुपोषण से ग्रसित हैं उन्हें हम NRC में भर्ती कराते हैं और हमारे यहाँ लगातार 5-6 महीने से 100% से ज़्यादा बेड वैकेंसी NRC की रही है, के लिए हम अब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही रहता है कि हमेशा हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल सकें।
1: कुपोषित बच्चों के लिए किस प्रकार के विशेष पुष्टाहार वितरित किए जाते हैं?
0: इस समय जो विभाग के द्वारा 9 प्रकार का पुष्टाहार निर्धारित किया गया है, जिसमें उनके लिए नमकीन प्रीमिक्स लड्डू, प्रीमिक्स दलिया रहता है और उसकी डबल मात्रा दी जाती है उनको। साथ ही उनको परामर्श भी दिया जाता है कि वह घर में पौष्टिक भोजन खिलाएं निर्धारित मात्रा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा उन्हें बताई जाती है कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना, 2 बार उनको जो है नाश्ता, और जो बाहरी जंक फूड हैं उनको न दिया जाए। इसके लिए सितंबर माह में पोषण माह के तहत विशेष अभियान भी चलाते हैं और उसी प्रकार हमारे द्वारा अप्रैल माह में भी पोषण पखवाड़े के तहत इसके लिए अभियान चलाकर जन जन को जागरूक किया गया था।
1: और इसमें गर्भवती और धात्री महिलाएं रहती हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था पोषण के लिए रहती है?
0: गर्भवती महिलाएं, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो हम उसकी प्रथम तिमाही के बाद उसका वजन कराते हैं और पहला स्वास्थ्य चेकअप कराते हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा द्वारा नियमित निगरानी की जाती है और देखा जाता है कि हर 3 महीने बाद उसके वजन में पर्याप्त वृद्धि हुई या नहीं हुई है। उसके लिए उन्हें पोषण परामर्श, आयरन टेबलेट, फॉलिक एसिड की टेबलेट एवं कैल्शियम की गोलियां प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उनको पोषण परामर्श भी दिया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा। विभिन्न वीडियो आदि के माध्यम से उनको समझाया जाता है कि आपको किस तरह का संतुलित डाइट लेनी है और अतिरिक्त एक खुराक अतिरिक्त लेनी रहती है, ज़्यादा काम नहीं करना होता है, और 1-2 घंटे का आराम भी उन्हें दिया जाना है। यह सब उनके परिवार वालों को समझाया जाता है। विभाग से भी उनके लिए अतिरिक्त कैलोरी पूर्ति के लिए पोषाहार का वितरण किया जा रहा है।

0: है, क्योंकि कोई माँ ही अगर स्वस्थ नहीं होगी तो उसके अंदर पड़ने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। इसलिए हम गर्भवती महिलाओं पर विशेष फोकस करते हैं, जिससे उनके बच्चे स्वस्थ पैदा हों। इसके लिए उनके परिवार वालों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा कई प्रकार की सामुदायिक गतिविधियाँ की जाती हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी करते हैं, पोषण परामर्श भी देते हैं। इसके लिए जो है BHND सत्र पर उनका वजन नियमित किया जाता है, उनकी हाइट ली जाती है। इस तरह हम जो है गर्भवती महिलाओं को पोषण परामर्श देकर उनके अंदर पलने वाले बच्चे को कुपोषण की श्रेणी से निकालने का प्रयास करते हैं।
1: इस अभियान में क्या किशोरियों को भी शामिल किया जाता है?
0: इस अभियान में किशोरियों को हम आयरन फॉलिक टैबलेट वितरण करने पर विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि प्रदेश और देश में एनीमिया की बहुत गंभीर समस्या है और हमारी लगभग 50% महिलाएं एवं किशोरियां एनीमिया से ग्रसित हैं। इसके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, और सप्ताह में प्रतिदिन उन्हें एक दिन आयरन टैबलेट लेने के लिए वितरित की गई है, जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को रजिस्टर भी दिए गए हैं और उनमें अंकन कर रही है। नियमित इसका वितरण कराया जा रहा है, साथ ही उन्हें पोषण परामर्श भी दिया जाता है कि किस प्रकार वह भोजन करके कुपोषण की श्रेणी से मुक्त हो सकें, क्योंकि आज की किशोरी ही कल की माँ है। तो संभव अभियान के तहत हम किशोरियों पर भी फोकस करते हैं।
1: कुछ लोगों की ये धारणा रहती है कि जो कुपोषण है वो केवल गरीब परिवारों की ही समस्या है, जबकि संपन्न परिवारों में भी कुपोषण की समस्या देखी जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये समस्या गरीबी अमीरी से इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। गरीब परिवारों में संतुलित डाइट न लेने की वजह से या उन्हें जानकारी के अभाव की वजह से कुपोषण पनपता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर घर में ही इस तरह की सामग्रियां रहती हैं हमारे लोकल लेवल पर कि हम उनका नियमित उपयोग करके कुपोषण को हम दूर कर सकते हैं। अमीर परिवारों का कुपोषण का कारण संतुलित डाइट न लेना तथा जंक फूड का सेवन करना है, जिससे उनके बच्चों में अल्प पोषण की बजाय ओवर पोषण हो जाता है और उनका जो है शरीर भारी हो जाता है, ओबेसिटी की समस्या उनके अंदर पैदा हो जाती है। हम इसका विशेष प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग संतुलित डाइट लें, जो भी उनके परिवार में इस तरह का खाद्य पदार्थ है उसका प्रयोग करके और उसको दूर करने का प्रयास करें।
1: कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा भोजन हमारे लिए पोषण युक्त है और हमारे शरीर के लिए ताकतवर है और अच्छा है।
0: जी जी, आजकल लोग जंक फूड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हरी साग सब्जियाँ, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, ये हमें संतुलित डाइट के रूप में लेना चाहिए। और हम उसके लिए परामर्श देते हैं कि अपनी भोजन में 4 प्रकार के खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए, जिसमें अन्न है, हरी सब्जी हैं, पीले फल हैं तथा दूध या दूध से बने पदार्थ, उसको अपने खाद्य में यूज करें, जिससे उन्हें संतुलित भोजन प्राप्त हो सके, कुपोषण से दूर रहकर स्वस्थ जीवन यापन कर सकें।
1: अगर हम अपने जनपद मथुरा की बात करें तो यहाँ कुपोषण को लेकर क्या स्थिति है? कितने बच्चे अभी कुपोषित हैं और कितने बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आए हैं?
0: हमारे यहाँ अप्रैल में 942 सीवियर माल न्यूट्रिशन बच्चे थे गंभीर रूप से कुपोषित, और 5051 बच्चे मैम की श्रेणी में थे, जिसको हमने 3 माह में 320 बच्चे हमने सैम की श्रेणी से बाहर किए हैं और 3496 बच्चे मैम की श्रेणी से बाहर किए गए हैं। नवीन बच्चे चिन्हित होने के कारण वर्तमान में 790 बच्चे मैम की श्रेणी में हैं और 4767 बच्चे स्रैम की श्रेणी में हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सितंबर तक हम इन सभी बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर 100% कर देंगे।
1: क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं से?
0: आप सभी श्रोताओं से कहेंगे कि सभी अपने बच्चों को संतुलित डाइट दें, साथ ही अपने परिवार में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर ध्यान दें तथा परिवार के सभी सदस्य उस माँ बनने वाली गर्भवती का सहयोग करें, जिससे उनके परिवार में स्वस्थ संतान पैदा हो तथा आगे भी वह जो है देश के लिए एक सुशिक्षित नागरिक बन सके।
1: श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री योगेंद्र सिंह जी, और जैसा कि बताया कि संभव अभियान के तहत किस प्रकार से पोषित बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनको पुष्टाहार

0: भी वितरित की जा रही है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की जीवन शैली को देखते हुए हमें अपने भोजन में जो हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं उन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि घर का जो भोजन होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है। इसलिए बाजार का भोजन है या जो जंक फूड है उसका सेवन बहुत कम करें और अपने पारंपरिक भोजन का सेवन करें, जिससे कि सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सकें, हमारा शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ और रोग मुक्त रहे। तो आज हमारे श्रोताओं के साथ ये महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपने हमें एक अवसर दिया जिससे हम अपना संदेश जन जन तक पहुंचा सकें। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।

और श्रोताओं, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे ये अपील करेंगे कि वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संरक्षण करें। वृक्ष हमारे लिए अमूल्य हैं। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध रहती है, और वृक्ष वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और भूजल स्तर को भी बनाए रखने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं, जिससे जैव विविधता सुरक्षित रहती है, और इसी के साथ ही कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से भी वृक्ष हमें बचाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और

ऋतु में पौधे लगाएं, क्योंकि इस समय उनकी वृद्धि अच्छी होती है। और पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल करें, उनमें खाद दें, पानी दें और उसको एक बड़े वृक्ष में तब्दील करें। और अब हम बात करते हैं आज के दिन विशेष की। तो मित्रों, हम बता दें कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन हर साल को यानी 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। ये विशेष दिन फोटोग्राफी की कला, इसके इतिहास, विज्ञान और हमारे समाज पर इसके गहरे प्रभाव के लिए समर्पित है। इस 1839 में फ्रांस के लुई डॉगरे और जोसेफ नीसफोर नीप्स ने फोटोग्राफी की पहली व्यावसायिक प्रक्रिया डागे एरियोटाइप विकसित की थी। फ्रांस सरकार ने 19 अगस्त 1839 को इस तकनीक को पूरी दुनिया के लिए पूरी तरह से निशुल्क और सार्वजनिक घोषित किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में इस दिन को चुना गया और इसे फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर पहला आधिकारिक विश्व फोटोग्राफी दिवस सन 2010 में 19 अगस्त को मनाया गया था। फोटोग्राफी हमें अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों और अनमोल पलों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का एक माध्यम देती है और ये दिन दुनिया भर के शौकी और पेशेवर फोटोग्राफरों को अपनी कला को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की एक मुख्य थीम होम रखी गई है, जिसके जरिए लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से घर की परिभाषा को कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो ये दिवस आज फोटोग्राफी के लिए समर्पित है।

और साथियों, इसी के साथ अब एक नज़र आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। आज की खास खबरों में है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक आते ही नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं समय से पूरी और पिछले वर्षों से बेहतर की जाएं। नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता निर्माण को प्रमुख मार्गों की मरम्मत और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित वॉल पेंटिंग का कार्य समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ एक और खबर है, मंडलीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए स्वर्गीय मोहन पहलवान जिला

स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय ट्रायल में मथुरा के 20 पहलवानों का चयन किया गया। चयनित पहलवान बुधवार को आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होने वाले मंडल ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। तो मित्रों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में

रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे जितेंद्र सिंह और कार्यक्रम संयोजक थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कलाकार से, आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की।

फिर सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर को फिल्म सागर में, और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम है आशिकी।

लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों को भी आपने सुना फिल्म आखिर क्यों में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

0: उदित नारायण साधना सरगम के गाए। फिल्म जो जीता वही सिकंदर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संगीत रूपक गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होए। लेखक रामनारायण अग्रवाल और प्रस्तुति है सुरेश गुप्ता की।
1: रामनारायण अग्रवाल का लिखा संगीत रूपक गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, संगीत और प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की है।

0: रावण मास सुहावन में जब कोकिला मंगल गाने लगी, वर्षा रस की हुई मेदिनी पर बिजली नभ ज्योति जगाने लगी, बदरा विरुदावली गाने लगे, धरती हरे साज सजाने लगी, प्रगटे तुलसी तब भूतल पे हुलसी ही में हुलसाने लगी।
1: सुरतिय नरतिय नागतिय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए।

0: तुलसीदास भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आबे ताहि पे ताहि तहां ले जाए।
1: गुरुवर नर हरिदास ने प्रतिभा को पहचान, तुलसी को आश्रय दिया और शास्त्र का ज्ञान।
0: वेद पुराण और शास्त्र पढ़े, अध्यात्म के ज्ञान में ध्यान लगाया, दर्शन अरु वेदांत के साथ ही छंद प्रबंध ये में बसाया। गुरु नर हरिदास ने बालक को सब राम चरित्र समेत सुनाया, तब पंडित राज हुए तुलसी, सब दैन्य दरिद्र को दूर भगाया।
1: यों कवि तुलसीदास जी बने प्रमुख विद्वान, सभी ओर होने लगा उनके यश का गान।

0: गए। एक दिन पत्नी चली पी हर गई तो छाया, इतना वियोग तैर गंगा समूल गए। लोक लाज त्याग ससुराल रात में ही जाए, सर्प को समझ रज्जु हाथी से हूल गए।
1: रत्नावली के कक्ष में अनायास यूं जाए, सोती पत्नी को लिया तुलसी दास जगाए।
0: बुद्धि विशारदा थी रत्नावली, चाहती थी उन्हें बोध कराना। काम प्रपीड़ित कंत का यूं उन्हें भाया नहीं ससुराल में आना। जीवन लक्ष्य को भूले हुए पति को था सुपंथ का मर्म बताना। कर जोड़ के बोली सती पति से, तुम्हें नाथ न चाहिए धर्म भुलाना।
1: अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में तो न होत भयभीत। यम यौवन चार दिना का पिया, यम यौवन चार दिना का पिया, जिस पे तुम नाथ उतावले धाये। संयम बांध का तोड़ा प्रभु, तुम वासना वारे बहाव ले आए। क्या यही लक्ष्य है जीवन का, क्या यही लक्ष्य है जीवन का, जिसका यही चित्त में चाव ले आए। लाज जहाज पे गाज गिरा, लाज जहाज पे गाज गिरा, बन आज जो प्रेम में बावले आए।
0: रत्नावली के सुन वचन उमगा हृदय प्रकाश, काट मोह बंधन चले खर तज तुलसीदास।

एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।

प्राण निगमागम सम्मति यद रामायणे निगदिंत क्वचि धन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल भावनोति।

गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये था रामनारायण अग्रवाल का लिखा संगीत रूपक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे लता खंडेलवाल, अलका श्रीवास्तव, श्री गोपाल अग्रवाल और तोताराम शर्मा। वादक कलाकार थे नीलेश कुमार और प्रदीप कुमार सारस्वत। वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी और विमल अरोड़ा के थे। इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता और संगीत निर्देशक थे सुरेश।

अभी आप सुन रहे थे संगीत रूपक गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होए, लेखक रामनारायण अग्रवाल और प्रस्तुति थी सुरेश गुप्ता की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं एक रचना तुलसीदास की, मन पंछी। मन पछताए अवसर बीते,

तुलसीदास की रचना मन पचतइए अवसर बीते, अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम

0: आइए सुनते हैं फरमाइसी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: नमस्कार,
1: नमस्कार जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं अछनेरा से राजेश लवानिया।
0: लवानिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद
0: क्या करते हैं सर आप?
1: जी। हम दुकान करते हैं,
0: किस चीज़ की दुकान है आपकी?
1: दुकान हमारी मोटरसाइकिल पार्ट्स की है।
0: अच्छा, हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं?
1: हम आपका कार्यक्रम कई साल से सुनते हैं, अच्छा लगता है हमें आपका कार्यक्रम।
0: जी, आज क्या फरमाइश रखेंगे कार्यक्रम में, बताइए
1: टेलीफोन फिल्म का गाना
0: जी। गाने के बोल,
1: मैं शायरी ना करूं।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं लवानिया साहब। बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद आपका।
1: जी। सरस्वत जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारा सर जी को सारा सुप्रेम प्यार भरा नमस्कार
0: नमस्कार। आपका स्वास्थ्य अब ठीक हो गया?
1: जी। सर थोड़ा सा आराम है आंख में अभी हल्का सा।
0: जी, हमारी यही कामना है आप जल्दी से ठीक हो जाएं।
1: चलिए सर आप सभी लोगों की दुआएं कुछ रंग लाई हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे भी कुछ ठीक ही होगा। देश प्रेमी फिल्म का गाना सुनवाइए, खून की किस्मत में सलाम अपन का।
0: ठीक है लवनिया जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं हम।
1: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।

0: हेलो,
1: हेलो जी। नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: मैं आसाम से बात कर रहा हूँ, अमल बसुमतारी, सोनितपुर आसाम से। बहुत
0: आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में सर।
1: बहुत धन्यवाद सर आपको भी मेरे कॉल को रिसीव करने के लिए। जी,
0: हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं आजकल आप?
1: प्रोग्राम तो सुनने लगे हैं लेकिन वो कॉल लगा नहीं पा रहा है। आज पहली बार कॉल लगा चुका है मेरा।
0: इस समय थोड़ी लाइन व्यस्त रहती है सर, तो थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, कोशिश ज्यादा करनी पड़ती है।
1: जी, अभी 88 बार कॉल किया तो लाइन मिल गया।
0: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर।
0: क्या करते हैं सर आप?
1: मैं तो खेत के साथ जुड़ती हूँ, मैं एक युवा हूँ और ये चाय का बागान है हमारा, इस पे लगातार
0: अच्छा
1: काम चलते हैं।
0: अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। चाय तो
1: कल
0: हमारे यहाँ
1: से
0: सभी को बहुत पसंद
1: बारिश
0: आती
1: थे,
0: है।
1: मौसम भी, हाँ, कल से बारिश थे और अभी धूप देने लगे हैं, तो बारिश नहीं तो हमारे खेत में बहुत प्रभाव पड़ता है, जो खेत अच्छी तरह से नहीं हो जाता है, जो चाय का बागान है जो भी उस पे पात नहीं देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, बारिश तो जरूरी है।
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज बताइए सर, क्या फरमाइश है कार्यक्रम में?
1: आज का फरमाइश है, फिल्म का नाम रहेगा क्या दिल ने कहा, और इसमें गाने के बोल है, सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गया।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।
1: हाँ जी,
0: बहुत
1: दोस्तों को
0: बहुत
1: डेडिकेट कर सकता है क्या? हमारे आसाम से भी और भी सुनने वाले बहुत दोस्त है,
0: हाँ बताइए बताइए।
1: उन लोग भी बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन लाइन नहीं मिला है। धेमाजी आसाम से सुन रहे हैं बिमल बसुमतारी, और सोराइडियो सुनारी आसाम से सुन रहे भाईकन मुंडा, और ये गोलाघाट असम से रमेश पत्र सुन रहे, और

0: जूली से सुन रहा है देवाशीष, जोरहाट से भी सुन रहा है बहुत सारे श्रोता, और इसके हमारे ये रमेश प्रजापति भगवान सिंह परमार को भी डेडिकेट करता हूँ, राकेश को, शिवा लोहार को, पूरन वर्मा को डेडिकेट करता हूँ, और तनुश्री बहन को।
1: जी, आपको और आपके साथियों को सुनवाते हैं हम आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: जी योगेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: शुक्रिया भैया,
1: कैसे हैं?
0: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
1: स्वाधीनता दिवस का अच्छी तरह मनाया गया पर्व आपके यहाँ?
0: बिल्कुल, काफी रंगारंग और देशभक्ति से परिपूर्ण रहा।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। आज कार्यक्रम में क्या फरमाइश रखेंगे बताइए।
0: फिल्म शेष नाग से सुनवा देंगे छेड़ मिलन के गीत रिमितवा।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं सर, आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: धन्यवाद भैया।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार जी,
1: नमस्कार
0: मैं जवाहर सिंह गाँव सहारनपुर से, लंबे जिला भरतपुर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
1: जवाहर सिंह जी। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
0: ठीक
1: कैसे हैं आप?
0: है साहब, आपकी स्वस्थ रहने की कामना करते रहते हैं।
1: जी। और आपका काम अच्छा चल रहा है, खेती बाड़ी का?
0: बढ़िया काम चल रहा है।

0: बारिश आपके यहाँ
1: हाँ बारिश
0: ठीक
1: है।
0: ठाक हो
1: हाँ
0: गई है?
1: ठीक ठाक हो गई है,
0: हमारे
1: परमात्मा
0: यहाँ तो बहुत कमी है बरसात की। राहत मिली होगी किसान भाइयों को?
1: किसान को राहत मिली है साहब, खूब अच्छी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: पुरानी फिल्म है साहब, मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा जमीन संगम बन का मीत है।
0: सुनवाते हैं जवाहर सिंह जी आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के
1: हाँ
0: लिए।
1: नमस्कार साहब।
0: नमस्कार।

प्रस्तुति थी संजय सारस्वत की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

0: क्यों ना क्यों सताते हो, होगा होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, आपका स्वागत है फिल्म संगीत के इस सफर में, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे करते हैं किसी न किसी विषय पर चर्चा, और इसी चर्चा के दौरान हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत की दुनिया से चुन करके लाए हुए कुछ चुनिंदा प्यारे से खूबसूरत से गीत। आज साथियों 19 अगस्त है, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और साथ ही ह्यूमैनिटेरियन डे भी मनाया जाता है। साथियों, हम यूं कह सकते हैं कि तस्वीरों में जिंदगी और इंसानियत में दुनिया, यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का उद्देश्य संकटों में लोगों की मदद करने वाले मानवीय कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और संकटग्रस्त लोगों के साथ खड़े होने का संदेश देना है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये कह सकते हैं हम कि तस्वीरें यादों को बचाती हैं और इंसानियत जिंदगियां। तस्वीरों में जिंदगी, इंसानियत में दुनिया। एक तस्वीर में मुस्कुराता हुआ बचपन हो सकता है साथियों। कभी कभी एक तस्वीर वो सब कह जाती है जिसे कहने के लिए हजारों शब्द भी कम पड़ जाते हैं। किसी तस्वीर में माँ की ममता ठहर सकती है। एक तस्वीर में मुस्कुराता हुआ बचपन हो सकता है। किसी तस्वीर में खेत की मिट्टी की खुशबू महसूस हो सकती है, और किसी तस्वीर में युद्ध, बाढ़, भूकंप और विस्थापन का दर्द भी दिखाई दे सकता है। यही तो है तस्वीर की ताकत। लम्हा गुजर जाता है मगर तस्वीर ठहर जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर याद वहीं रह जाती है। एक हमें सिखाता है कि दुनिया को देखिए, और दूसरा कहता है सिर्फ देखिए मत, इंसान के दर्द को महसूस कीजिए। चर्चा आपसे यूं ही करते रहेंगे इस फिल्म संगीत के सफर में, लेकिन आइए सुन लेते हैं पहले ये प्यारा सा गीत।

साथियों, सच में जीवन एक रंगोली है। इसमें रंग कैसे भरने हैं, ये आपको और हमें मिलकर सोचना है। कुछ रंग बेरंग होते हैं और कुछ रंग वो सपने सजाते हैं जैसा कि हम जिंदगी को जीना चाहते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में, तो हम तस्वीर की बात कर रहे थे। तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती श्रोताओं, हम जब कोई तस्वीर देखते हैं तो अक्सर कहते हैं बहुत सुंदर फोटो है, लेकिन फोटोग्राफी केवल सुंदर चेहरे, सुंदर प्रकृति या सुंदर दृश्यों को कैमरे में कैद करने का नाम नहीं है। फोटोग्राफी इतिहास को बचाने का काम करती है। सोचिए, अगर तस्वीरें ना होती तो क्या होता? सोचिए, अगर तस्वीरें ना होती तो हम अपने अतीत को किस तरह देखते? पुरानी इमारतें, पुराने शहर, आज़ादी के आंदोलन के चेहरे, किसानों का जीवन, युद्धों की विभीषिका, वैज्ञानिक उपलब्धियां और हमारे अपने परिवार की पुरानी यादें। बहुत कुछ हमारी आंखों के सामने सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि किसी ने कभी कैमरा उठाकर उस पल को रोक लिया। और 19 अगस्त को मनाया जाने वाला वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इसी कला, विज्ञान, शिल्प और इतिहास को सम्मान देता है। यह दिन डागेरियोटाइप से जुड़ा है, जिसकी घोषणा फ्रांसीसी सरकार ने 19 अगस्त 1839 को दुनिया के सामने की थी। और आज कैमरा हमारे हाथ में है, हमारे मोबाइल फोन में कैमरा है। हम एक एक सेकंड में तस्वीर खींच सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम तस्वीर खींच किस चीज की रहे हैं? सुंदरता की या सच्चाई की? एक तस्वीर समाज को आईना दिखा सकती है। एक फोटोग्राफर सिर्फ कैमरे के पीछे खड़ा व्यक्ति नहीं होता, कई बार वह समाज का गवाह होता है। जब कोई फोटोग्राफर किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में जाकर तस्वीर खींचता है ना, तो वो केवल पानी नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि किसी का उजड़ा घर, किसी बच्चे की आंखों में डर, किसी माँ की चिंता और किसी स्वयं सेवक के हाथ में राहत की सामग्री। तस्वीर हमें बताती है कि दुनिया में क्या हो रहा है और यही से फोटोग्राफी का रिश्ता जुड़ जाता है इंसानियत से। विश्व मानवीय दिवस, इंसान होने का अर्थ। अब आइए एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर बढ़ते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की ओर। मानवीय सहायता का अर्थ सिर्फ किसी को पैसे देना नहीं है साथियों, किसी भूखे को भोजन देना भी मानवता है, किसी प्यासे को पानी देना भी मानवता है, किसी घायल को अस्पताल पहुंचाना भी मानवता है, और किसी डरते हुए बच्चे का हाथ पकड़ लेना भी मानवता है, और कभी कभी किसी दुखी इंसान के पास चुपचाप बैठ जाना भी मानवता है। आपसे इसी तरह से होती रहे।

साथियों, तस्वीरों में कुछ पल ठहर जाते हैं, कुछ चेहरे हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, मगर इंसानियत का जो हाथ बढ़ जाए तो टूटे हुए लोग भी फिर से संवर जाते हैं। मगर दिल में इंसान को जगह दीजिए, कैमरे में दुनिया को कैद कीजिए, दिल में इंसान को जगह दीजिए। तस्वीरें लाख खूबसूरत हों, पर सबसे पहले खूबसूरत

तस्वीर एक दूसरे के लिए खड़े इंसानों की बनाइए। और 19 अगस्त हमें दो संदेश देता है, देखिए भी और महसूस भी कीजिए, तस्वीर भी बचाइए और इंसानियत भी। इसी उम्मीद के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस की और विश्व मानवीय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

साथियों, फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

साथियों, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। मत सोचिए लोगों के दृष्टिकोण के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग हमेशा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद का कोई मूल्य

जिनका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ श्रोताओं आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, जीवन जीने की कला हर किसी को नहीं आती, और जिसको ये कला आ गई वो खिलाड़ी बन जाता है हर खेल का, या यूं कह लें कि जिंदगी का सिकंदर बन जाता है। बस हमें भी सीखना है कि मुकद्दर का सिकंदर कैसे बनना है। अब ऊंचाइयों को छूने का वक्त आ गया है, एक जज्बा है आपके अंदर, उसे बाहर लाने का वक्त आ गया है। इनायत खुदा की होती रहेगी सब पर, अगर कोई सुकून है तो इस दिल पर छा गया है। बंधुओं, ये तो हो गई आपसे ढेर सारी बातें, आइए अब चलते हैं आपके संदेशों की ओर, मगर उससे पहले सुन लेते हैं आइए कार्यक्रम का ये आपका पहला फरमाइशी गीत।

साथियों, अभी आपने सुना नितिन मुकेश और लता मंगेशकर को। फिल्म नूरी के इस गीत के लिए इस गीत को लिखा जन्निसार अख्तर ने और खय्याम ने दिया संगीत। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। साथियों, आइए पढ़ लेते हैं आपके द्वारा भेजे हुए ये संदेश। 11:45 पर हमें ये पहला संदेश प्राप्त हुआ है। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल का गमरिया, जमशेदपुर के विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार भी हमसे जुड़ चुके हैं। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजे शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नाम देव गंजडुडवारा से हमसे जुड़ चुके हैं। मलकापुर महाराष्ट्र के नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर का संदेश मिला। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस हांकर, निर्मला हांकर और विशाल हांकर का संदेश भी हमें मिल चुका है। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख का। डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई कुमार, संचित वायाल और प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली सानवी, हर्षता, मुक्काम पोस्ट काले गांव, जाफराबाद, मराठवाड़ा से हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश मिला है मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक का हमसे जुड़ चुके हैं। बुलढाणा महाराष्ट्र के वासुदेव बोधवड़े, अनीता और रमेश राव गाठोड़े। संदेश मिला है हमें मामुलवाड़ी महाराष्ट्र के सोपान ताइडे, मोहन कारांगले और जिंगाव विदर्भ से बसंत राव भोजने और पीएस हांकर का संदेश भी हमें मिला। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा सदर बाजार कुरावली से हमसे जुड़े। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का संदेश हमें सब्जी मंडी बुलढाणा से प्राप्त हुआ। अगले संदेश भेजने वाले हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर और सतना एमपी के उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक हमसे जुड़े। मजनू का टीला से कमल मधु सागर बालूजा का संदेश भी मिला। सिंगार तलाई खंडवा मध्य प्रदेश के राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा, शालिनी, कामेश, भारती हमसे जुड़ चुके हैं। श्री राम गोंधली, उषा गोंधली, हर्षदा वैष्णवी, पूनम, युवराज गोंधली, भावी निमगांव महाराष्ट्र से हमसे जुड़े। पलकरण वर्मा, अंजनी रजमत, मुरली नीरा, ज्योति प्रहलाद वर्मा हमसे जुड़े। ग्राम पंचायत बठेना, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव।

श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल का संदेश भी हमें मिल चुका है। अशोक दले, सविता अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, कुमार गली श्री रामपुर से, पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा आविका, विशाखा सोनवने का संदेश भी प्राप्त हो चुका है। खेल बाजार पानीपत के नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू, भाविक और सिक्का हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हमारे पास आया है राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा आकाश कुमार का हमसे जुड़ चुके हैं संदेश भेजकर। ग्राम पलसी बुजुर्ग के जिला बुलढाणा से विजय शेगोकार, रेणुका ऋषिकेश, जयश्री शेगोकार और देव, ये संदेश हमें मिला है। तुलसी मस्कीन, बीना आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन का गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, और पंचकुला चंडीगढ़ के राहुल खुराना, रचिता कीशु रिधान खुराना भी हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन, शमसुल कमर राही भी हमसे जुड़े। संदेश प्राप्त हो चुका है प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी का गुजरात गांधी ग्राम से, मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दवीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम रेलवे रोड गंजडुडवारा से हमसे जुड़े। फुटानी चौक नारायण स्टेट के लल्लन मिश्रा, नूतन अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित का भी संदेश हमें मिल चुका है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव सायना और निवान शर्मा भी हमसे जुड़ चुके हैं। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार के राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, श्वेता, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, अच्छे लाल, राय बुल्की वाली और फलना झा का भी संदेश हमें मिल चुका है। चंडीगढ़ के सतीश अनेजा, विमला अनेजा भी हमसे जुड़े। अगला संदेश शेरवानी स्कूल गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश के आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का प्राप्त हुआ। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता, प्रतीक हिवराले भी हमसे जुड़ चुके हैं। राहुल मनवर, सरला रोशनी, चेतन विशाल और बेबी प्रियांशी शाहू नगर यवतमान से हमसे जुड़े। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का।

साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी गोपी। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमें संदेश मिला है हमारे अगले फरमाइशकर्ता का। साथियों, आपसे निवेदन है कि अपना नाम हमें अपने संदेश में लिख के भेजें। हमारे कई श्रोता साथी ऐसे हैं जो कभी अपना एड्रेस ठीक से नहीं लिख के भेजते हैं और कभी नाम। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, प्रसाद जाधव, सोनल, बेबी सिया जाधव, नेहरू चौक पैठड़ से आप हमसे जुड़े, सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता, ये हमसे जालना शहर से जुड़े हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा रामेकर परिवार का। साथ में जुड़ी हैं रुचिका रामेकर, ये अमरावती महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हमारे अगले फरमाइश करता है। खांदौली आगरा से राजू लवानिया, राधेश्याम उपाध्याय, अर्पण खीमेश त्रिपाठी, पंकज पंचमलाल चतुर्वेदी, हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, पूरा अब्बासी परिवार, ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हमसे जुड़े, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा का संदेश भी हमें मिला।

करीम नगर से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साई किरण का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। अगला संदेश हमें भेजा है नांदेड़ महाराष्ट्र के प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले ने। हमसे जुड़ चुके हैं आदर्श नगर मलौट पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, मैंडी और सौरभ शर्मा। साथ में जुड़ी हैं शाइना शर्मा, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आप हमसे जुड़े हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का संदेश भी हमें मिल चुका है। अगला संदेश हमारे पास आया है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के और हनुमान बोड़के का। अंबेडकर चौक बकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े का संदेश भी प्राप्त हुआ। गांधीनगर गुजरात के सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। सुशीला देवी मंदूलकर, सदानंद कुमार गौरव, डाबकी रोड अकोला से हमसे जुड़े। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का संदेश हमें मिल चुका है। शिव मंदिर हकीकत पुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी और आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का संदेश भी हमें मिला। रसेड़ा छत्तीसगढ़ के मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू का संदेश भी हमें मिला। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड के निसार, सलमानी नौशाद, सलमानी बेबी, आलिया और आयान बाबू हमसे जुड़ चुके हैं। ये संदेश हमें मिला है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा का, दादरी गेट भिमानी से। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्भी, बेबी बॉय हिमाक्ष का संदेश कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी, जोधपुर, राजस्थान से हमें प्राप्त हुआ। आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग सहारनपुर से हमसे जुड़ चुके हैं। खरसावां झारखंड के सुकरा नायक, मंजू, जलेश्वर, गौरव हमसे जुड़े। राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना और भानु राज खन्ना, अमित अम्मी का संदेश हमें मिला तेलंगाना से। गजानन नादरे, मारुतराव पंचाल, गिरगांव महाराष्ट्र से हमसे जुड़े। साथियों आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

साथियों, अब पढ़ लेते हैं आपके कुछ और संदेश। समय तो हो चुका है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन चलते चलते एक दो संदेश। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के विजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी, अनय अनाया महोबिया और पेंटर बाबू का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं रमा शंकर शुक्ला और साथ में भाई अशोक नामदेव, पुरुषोत्तम सिंह, कृष्ण कुमार याजी, गेंदलाल श्रीवास जी, आप हमसे जुड़े हैं रायगढ़ से। और अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी का। आप हमसे जुड़े हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। हमसे जुड़ चुके हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत शाहनाबाद, सरफराज, फरदीन सोहान, अरजान, अबान अब्बासी, समस्त अब्बासी परिवार, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से आप हमसे जुड़े हैं। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवान, संगीता, लिपि, दीपाली, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड से आपका संदेश प्राप्त हुआ। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से आप हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, गांव जाखोद, राजस्थान से आप हमसे जुड़े हैं। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया का संदेश भी हमें मिल चुका है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम आशीष का संदेश हमें पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। साथियों, समय हो गया है अनुमति लेने का, कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि दूसरों में गलती तो हर कोई ढूंढ लेता है, पर दूसरों में गुण और अपने में कमी ढूंढने का गुण शायद ही किसी में होता है। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। संवे स्वरों में आइए सुनते हैं मल्हार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे श्रोता साथी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत के अंतर्गत समवेत स्वरों में मल्हार गीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला मल्हार गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे श्रोता साथी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत के अंतर्गत समवेत स्वरों में गाए हुए कुछ मल्हार के गीतों का आनंद।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं समवे स्वरों में मल्हार गायन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत अगला मल्हार गायन।

0: कार्यक्रम ब्रजलोक गीत अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे मल्हार गीत समवेत स्वरों में, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले 1 दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
1: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: मंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधा प्रतिशत गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर समवेत स्वरों में आप सुनेंगे देशगान। अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम में होगी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जयंती एवं विश्व मानवीय दिवस विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे स्वरचित काव्य पाठ पावस। कवित्री होंगी मनु दीक्षित। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी खुशबू मिश्रा। अपराह्न 1:45 पर फिल्म संगीत का ले सकेंगे हमारे श्रोता साथी आनंद। अपराह्न 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे। संध्या 5:30 पर आरंभ होगी हमारी दूसरी सभा हमारे युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बात के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जयंती एवं डॉ शंकर दयाल शर्मा जयंती विषय पर होगी चर्चा। साथ ही चर्चा होगी विश्व फोटोग्राफी दिवस विषय पर। आप सुनेंगे वार्ता। कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक जीवन में बदलते रिश्तों का स्वरूप और युवा दायित्व मंजरी गौतम जानकारी देंगी।

साहित्य कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत आप सुनेंगे पावस पर अभिषेक भारद्वाज द्वारा जानकारी। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:30 पर आप सुन सकेंगे। ब्रज साहित्य कार्यक्रम संध्या 6:15 पर आप सुन सकेंगे।

संध्या 6:50 पर हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो रिपोर्ट में सेवर भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक समूह बैठक की रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुति सहयोग नीलमणि शर्मा की होगी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संजीव कुमार व्यास, प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित एवं दिलीप यादव का। संध्या 7:31 पर संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे, आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे, कलाकार होंगे पंडित जगन्नाथ और साथी। शहनाई वादन आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों के द्वारा, राग होगा मधु, सूरावली, चंद्रकौस, यमन, दादरा।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवे स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनितालोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं खुशबू मिश्रा।

राम नाम की ज्योति जलाई, जन जन के मन में आस जगाई। अवधि की मीठी बोली में राम कथा घर घर पहुंचाई। तुलसी ने ऐसा दीप जलाया जो सदियों बाद भी बुझ ना पाया। नमस्कार बहनों, वनिता लोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बहनों, हम आज बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस महान संत कवि और भक्त की जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाया और हिंदी साहित्य को ऐसी

अमर कृति दी जिसे आज हम श्रद्धा और प्रेम से पढ़ते हैं। आज का दिन तुलसीदास जी की जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। ये अवसर केवल एक महान कवि को याद करने का नहीं है, बल्कि उनके विचारों, उनकी भक्ति और उनके साहित्य से प्रेरणा लेने का भी दिन है। उनका जन्म राजापुर चित्रकूट क्षेत्र में माना जाता है और परंपरा के अनुसार उनका जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी बताया जाता है। कहा जाता है कि बचपन से ही तुलसी का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। बाद में उनका विवाह रत्नावली से हुआ। सांसारिक मोह से हटकर भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह से वो समर्पित हो गए। उनका जीवन भक्ति, साधना और लोक कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने संस्कृत के साथ लोक भाषाओं में भी साहित्य रचा, ताकि धर्म और जीवन के आदर्श केवल विद्वानों तक सीमित न रहें, बल्कि आम लोगों तक भी पहुँचे। उनकी रचनाओं में भक्ति के साथ साथ जीवन के व्यवहार, नीति, आदर्श, प्रेम, करुणा और मानव मूल्यों की गहरी झलक दिखाई देती है। तुलसीदास जी की भक्ति परंपरा में हनुमान जी का विशेष स्थान है। उनसे जुड़ी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में हनुमान चालीसा प्रमुख है। ये रचना आज भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का हिस्सा है। आइए, तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर हम उनके साहित्य को केवल पढ़े ही नहीं, बल्कि उसमें छुपे संदेश को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। रामचरित का दीप जलाएं, मन से हर अंधियारा मिटाएं, तुलसी के आदर्शों को अपनाएं, प्रेम, सत्य और सद्भाव से अपना समाज सजाएं।

0: बहनों, राम जी के सुंदर भजन के बाद अब आपको सुनवाते हैं एक सुंदर सा स्वरचित काव्य पाठ, पावस। कवित्री हैं मनु दीक्षित।
1: सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हरियाली और भक्ति का महीना सावन, ये कैसा है ये मैंने कुछ अपने शब्दों में लिखा है।

स्वर्ग के देव देवी देख सब महिमा सुनाते हैं। ये ब्रज में सावन हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है कि

है। और इस महीना को, सावन को, धरती और आकाश के मिलने का महीना भी कहा गया है। तब लिखा है,

और एक बेटी का विवाह हो जाता है, और सावन के महीने में जब उसका भाई लेने के लिए नहीं आता तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, काली कोयल बैठ पेड़ पर, काली कोयल बैठ पेड़ पर,

हमारे ब्रज में सावन के महीना में हर बन बन में, चाहे महागवन, गोकुल, वृंदावन हो, सब में हिडोले पड़ते हैं। तो वहां के हिडोले देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी धरती पर आते हैं। तब लिखा है कि

और वृंदावन स्वर्ग के देव घूम रहे बन बन, गोपी ग्वाल संग हो गोपी ग्वाल संग खुश हो कर लहे किलकोर, झूमे नंद किशोर कदम की डार झूला।

डल के डोले सखी बन शंकर, गली गली डोले सखी बन शंकर, गली गली डोले।

बहनों, अभी आपने मनु दीक्षित द्वारा ये प्रस्तुत काव्य पाठ सुना। शीर्षक था पावस। इंसानियत की पहचान यही, दर्द किसी का अपना समझे, मुश्किल में जो साथ खड़ा हो वही सच्चा इंसान समझे। बहनों, आज हम विश्व मानवीय दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य मानवीय संकटों में लोगों की मदद करने वाले मानवीय कार्यकर्ताओं, राहत कर्मियों और आम नागरिकों के योगदान को सम्मान देना इस दिवस का उद्देश्य है। बहनों, 19 अगस्त यानी आज ही के दिन पूरी दुनिया में विश्व मानवीय दिवस मना रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानियत किसी जाति, धर्म, भाषा या देश की सीमा में बंधी हुई नहीं है। जब कोई व्यक्ति मुश्किल में हो, किसी मुसीबत में हो, तब उसके साथ खड़ा होना, उसकी मदद करना और उसके दर्द को समझना ही सच्ची मानवता है। दुनिया के कई हिस्सों में लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, भुखमरी, बीमारी और अन्य संकटों का सामना करते हैं। ऐसे समय में राहत और बचाव कार्यों में जुटे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंदों तक भोजन, पानी, दवाइयां, आश्रय और दूसरी जरूरी सहायता पहुंचाते हैं। 19 अगस्त की तारीख संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक दुखद घटनाक्रम की स्मृति से भी जुड़ा हुआ है। 19 अगस्त 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर बम हमले में कई लोगों की जान गई थी, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यों से जुड़े लोग भी शामिल थे। इसी घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानवीय दिवस मनाने की घोषणा की। मानवता केवल बड़ी बड़ी बातें करने का नाम नहीं, किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, बीमार की मदद करना, ये सभी मानवता ही तो है। किसी के दर्द को समझ सके वही सच्चा इंसान। मदद के लिए बढ़ा दे जो मुश्किल में अपना हाथ, उससे खूबसूरत दुनिया में और क्या ही होगी बात।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया खुशबू मिश्रा ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत

कुमार सानू और अलका याग्निक की जुगलबंदी में अभी आपने सुना फिल्म बलमा के इस गीत को। गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है। आवाजें अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की। गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल

0: जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडराफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम

0: विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने NEET UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
0: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला।

0: खिला ये भी जानिए में
1: जी
0: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओ, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी श्रोताओ, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
1: जी।
0: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
1: जी,
0: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
1: जी।
0: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
1: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
0: आशा है श्रोताओ कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
0: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
1: जी।
0: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
1: जी।
0: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
1: जी।
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
1: जी।
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी।
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम

0: प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
1: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
2: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
1: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
2: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
1: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
3: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
4: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आँख मिचौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है। मैं नीचे क्यों जाऊं?
3: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
4: अच्छा,
1: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
2: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
4: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
1: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
3: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
2: वो खुशी खुशी बहने लगी।
4: देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।

0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगीं। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगीं,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
0: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
1: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
3: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
3: डरो मत।
1: हाँ,
3: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
4: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
4: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
3: पुत्री, तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
3: पुत्री, तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा।

0: तू रुकती तो जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
2: चरैवेति, चरैवेति, यही तो जीवन है।
3: चरैवेति, चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द

0: हेलेन को सिखाना होता, वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
1: हेलेन, आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
2: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ।
0: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
2: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
1: मिसेस केलर
3: जी,
1: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने

0: 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओ इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज 19 अगस्त है और आज 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, जो लुई डागरे द्वारा 1837 में विकसित की गई फोटोग्राफी प्रक्रिया डागरे टाइप के आविष्कार की स्मृति में मनाया जाता है। इस प्रक्रिया को 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा विश्व को उपहार स्वरूप आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। तब से फोटोग्राफी का जबरदस्त विकास हुआ है और यह अभिव्यक्ति, संचार और दस्तावेजीकरण का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है। इसलिए फोटोग्राफी के इतिहास में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का सम्मान करने के लिए 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में चुना गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और इतिहास को मान्यता देने और उसकी सराहना करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन समाज, संस्कृति और संचार पर फोटोग्राफी के उद्भव से लेकर अब तक पड़े प्रभाव को याद करने का दिन है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि 19 अगस्त 1839 को डेगरे रोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, जो फोटोग्राफी के शुरुआती सफल रूपों में से एक है। इस घटना ने छवियों को कैप्चर करने, संरक्षित करने के तरीके में क्रांति ला दी और आधुनिक फोटोग्राफी की नींव रखी। विश्व फोटोग्राफी दिवस शौकिया और पेशेवर दोनों तरह के फोटोग्राफरों को अपना काम साझा करने और फोटोग्राफी के रचनात्मक पहलुओं का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह छवियों के माध्यम से दुनिया की सुंदरता और विविधता को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। इतिहास, संस्कृति और दैनिक जीवन के प्रलेखन में फोटोग्राफी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व फोटोग्राफी दिवस भावी पीढ़ियों के लिए इन दृश्य अभिलेखों को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये दुनिया भर के फोटोग्राफरों और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक साथ आने, फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून को साझा करने और इसके महत्व और इस भविष्य की चर्चाओं पर एक अवसर है कि हम किन किन दिशाओं पर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस के तकनीकी पहलुओं, समाज पर इसके प्रभाव और छवि निर्माण से जुड़े नैतिक पहलुओं के बारे में जागरूकता

आता है। यह लोगों को दृश्य साक्षरता और छवियों के माध्यम से कहानी कहने के महत्व के बारे में शिक्षित करने का भी एक अवसर है। कुल मिलाकर विश्व फोटोग्राफी दिवस दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने, सूचित करने और जोड़ने की फोटोग्राफी की शक्ति याद दिलाता है।

0: और साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है सामाजिक जीवन में बदलते रिश्तों का स्वरूप और युवा दायित्व। वार्ताकार हैं मंजरी गौतम।
1: निश्चय ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आदिकाल से ही उसकी स्थिति, उसका स्तर और उसकी विचारधारा समाज के अनुरूप ही होती है। हम जानते हैं कि समाज में विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं, जो सामूहिक रूप से अपना विकास करने के लिए एकजुट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, नियम बनाते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप अपने समाज की संरचना करते हैं। किंतु ये समाज एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है। एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। परिवार में जैसे एक व्यक्ति पिता भी है और भाई भी, पुत्र भी है और ससुर भी। इसी प्रकार महिलाओं के बारे में भी यही संबंध हम अपने परिवारों में देखते हैं। वस्तुतः इन्हीं को रिश्तों का नाम दे दिया गया है। एक पिता से अपनी संतान का पोषण करने की, पुत्र से अपने माता पिता की सेवा करने की, नारी से अपने परिवार के कल्याण करने की अपेक्षा की जाती है। सामूहिक रूप से जब इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब सामाजिक रिश्तों में दरार पड़ जाती है। भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, जिठानी देवरानी, भाई भाई इत्यादि अन्य अनेक रिश्तों में से यदि एक छोर भी नाराज हो जाता है या दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता, तो वो रिश्ता टूट जाता है। ऐसे कितने ही दंपतियों के घर बसने से पहले ही उजड़ गए। रिश्तों के टूट जाने से कितने ही भाई अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाने से वंचित हो जाते हैं। संबंधों की ये दरारें एक आंगन में दीवार खड़ा कर देती है। माँ बाप के लिए बच्चे पराए हो जाते हैं और स्वार्थी माता पिता के लिए उनके संतान दर दर की ठोकरें खाती हैं। समाज में अपनी थोती शान को बनाए रखने के लिए हम आज धार्मिक अनुष्ठानों, तीज त्योहारों, पर्व और जयंतियों पर मनाए जाने वाले आयोजनों पर अपने रिश्तों का मात्र औपचारिक ढोल पीटते हैं। आज एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना तो दूर, हम बात करना भी पसंद

0: नहीं करती। झूठे अहम के लवादे को लादे और अपने कर्तव्य से मुखापेक्षी बनकर मात्र दूसरों को ही दोष देते हैं। सामाजिक परिवेश में रिश्तों की ये टूटन आज हमारे मना मस्तिष्क में प्रेम, शांति, दया, करुणा, सद्भाव और कर्तव्य निष्ठा की भावना पैदा न करके मात्र परस्पर द्वेष, घृणा और दंभ ही पैदा कर रहे हैं। अगर युवा वर्ग को ध्यान में रखें तो आज के युवा वर्ग के कई ऐसे दायित्व हैं जिन्हें संभालना उसका पहला कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य है कि वे दहेज प्रथा को रोकने में सहायता करें। दहेज जैसी कलंकित प्रथा को रोकना तभी संभव हो सकता है जब स्वयं लड़के व लड़कियां इसके विरोधी हो जाएं। लड़कों को चाहिए कि वे ऐसी शादी करने से इनकार कर दें जिसमें भारी भरकम दहेज लिया जा रहा हो। लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी ये भी दायित्व है कि वह अब इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। पर्यावरण संरक्षण भी युवाओं का दायित्व है। पर्यावरण की सुरक्षा में भी उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अपने आस पड़ोस के वातावरण को साफ सुथरा व स्वच्छ रखना, कहीं भी गंदगी को इकट्ठा न होने देना, इन सभी बातों का पालन युवा वर्ग करे तो ये कदम पर्यावरण संरक्षण में एक सार्थक प्रयास साबित होगा। शिक्षा का प्रसार प्रसार भी युवाओं के दायित्वों के अंतर्गत ही आता है। अपने आसपास रहने वाले ऐसे बच्चों को जो पढ़ने में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाना व उनकी मदद करना ये भी युवाओं का ही दायित्व है। विवाह किए बिना जीवन अधूरा है, जीवन का कोई महत्व नहीं है, इस विचार के कारण लोगों में अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। विवाह से जुड़े इस अंधविश्वास को तोड़कर युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। इतना ही नहीं, विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना भी युवाओं का ही दायित्व है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि शादियों, विवाह, अन्यथा पार्टी में डीजे का प्रचलन जोरों पर है, जिससे न सिर्फ फिजूल खर्ची होती है बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डीजे की तीव्र ध्वनि हमारे कानों के सुनने की क्षमता से बहुत ज्यादा होती है। अतः युवाओं द्वारा इस पर रोक लगा दी जाए तो इससे न सिर्फ फिजूल खर्ची कम होगी बल्कि ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आ सकेगी। इसके साथ ही इस फिजूल खर्ची पर रोक लगाने से बचे पैसों से ऐसे विवाह संपन्न कराए जाएं जो परिवार अत्यंत निर्धन है। ऐसे प्रयासों से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम और खुशहाली का माहौल पैदा होगा। इन सभी से हटकर देखें तो एक अन्य बिंदु हमें साफ तौर पर दिखाई देता है और वो है बालिकाओं के विद्यालयों के आगे लड़कों का जमावड़ा। यानी आज के युवाओं द्वारा किया गया ये कार्य उन्हें न सिर्फ छोटे होने का एहसास दिलाता है बल्कि उन्हें उन्हीं की नजरों में गिराता भी है। इसके अलावा लड़कियां भी समाज में लड़कों की ही तरह भागीदारी निभाती हैं। यानी लड़के और लड़कियां ही समाज में गलत रिश्तों को ना पनपने दें, तभी शायद ये समाज सही मायने में अपना अस्तित्व कायम कर सकेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां भी अपने दायित्वों को भली भांति समझ सकेंगी। अगर युवा वर्ग इन सभी बातों को अमल में लाए और अपने दायित्वों को समझे तभी समाज की, राष्ट्र की व देश की सच्ची तरक्की हो सकेगी।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता सामाजिक जीवन में बदलते रिश्तों का स्वरूप और युवा दायित्व। वार्ताकार थी मंजरी गौतम। युवा साथियों, कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।

0: नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाय मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अधिकार से ही धारा सब होती है। हम जानते

0: है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अधिकाल से धारा सब है, हम जानते

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर होगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे अभिषेक भरद्वाज। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति परक संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट सेवर भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक समूह बैठक की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति सहयोग नीलमणि शर्मा, ओबी अंशदान देवराज कृष्ण दीक्षित और दिलीप यादव का होगा। इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे संजीव कुमार व्यास, संयोजन ओपी सिंह का होगा। समय याद रखिएगा संध्या 6:50।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी यारियां। रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

रंग गोरा, बालों का रंग काला है, शरीर की बनावट है गोल चेहरा, आंखें काली हैं, इन्होंने सलवार सूट नीले कलर के पहने हुए हैं और ये विनुपुर जरेलिया थाना लोधा जनपद अलीगढ़ इनका जो निवास है वहां का है। अगर इस संबंध में किसी को कोई जानकारी मिलती है तो आप इनके निवास पर या निकटतम पुलिस चौकी या थाने को सूचित कर सकते हैं। इनका नाम राखी है और उम्र इनकी लगभग 20 वर्ष है। ये हैं कौशल चौधरी जो कि लापता हैं। इनके पिता का नाम है सत्यवीर, आयु 15 वर्ष है, लिंग पुरुष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग इनका साफ है, बालों का रंग काला है, शरीर की बनावट सामान्य है और ये 30/7/2026 से लापता हैं। इनकी आंखों का रंग काला है, इनके बाएं हाथ की कोहनी पर चोट का निशान है। इन्होंने नीले रंग की हाफ जींस व सफेद रंग की टी शर्ट और चप्पल पहनी हुई है और इनका निवास ग्राम से ही थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा है। इनके संबंध में भी यदि आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप इनके निवास स्थान पर या निकटतम पुलिस चौकी व थाने को सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे लापता व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं सुनिए। खोई हुई महिला का नाम कमलेश, पिता का नाम ईश्वर, आयु 35 वर्ष, लिंग महिला, कद 5 फुट, रंग सांवला, बाल का रंग काला, शरीर की बनावट एक हरा बदन, घटना की तिथि 19/7/2026 है, आंखें काली हैं, इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है और इनका पता है बाकलपुर थाना फरेह जनपद मथुरा। अगर इनके संबंध में किसी को कोई जानकारी मिलती है तो निकटतम पुलिस थाना या चौकी में इनकी सूचना अवश्य दें। ये हैं राखी, जो कि 14/7/2026 से लापता हैं। इनके पिता का नाम है अजीत सिंह, आयु 20 वर्ष, लिंग महिला, कद 5 फुट 6 इंच।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवा में पावस ऋतु पर काव्य पाठ कवि हैं अभिषेक भारद्वाज।
1: पावस ऋतु विषय पे मैं आज यहाँ काव्य पाठ कर रहा हूँ आपके बीच में। कछु छंदन के माध्यम से आपके बीच में जुड़वे को प्रयास करूं, फिर एक गीत आपके बीच में रखूंगा कि बागन में मोर कर रहे आज शोर भारी, कूक रही कोयलिया बदरा के छाए ते, मार रहे किलकारी आंगन में ग्वाल वाल, नन्नी नन्नी प्यारी प्यारी बूंदन में नहाए ते, ओफन के नदियां रिझा रही है मनुआ को, मजा आ रहे है या में नाव को तिराए ते, प्रकृति ने धरो आज दुल्हन को स्वरूप, धराहु सिहा रही है पावस के आए ते, धराहु सिहा रही है पावस के आए ते, परत फुहार चढ़ जा में चौबारे पेनार, गीत मलहार गा में पावस के आवे पे, तालियो तलैयन में भर जावे पानी जब, कूद कूद नाम नित पावस के आवे पे, बागन में आवे बहार परे नन्नी जो फुहार, झूले अमुआ की डार पावस के आवे पे, करके सिंगार भारी मन में से हावे नारी, करे इंतजार नित पावस के आवे पे, करे इंतजार नित पावस के आवे पे, कि ओढ़ चूनर सिधानी धारा लागत सुहानी, भरो खेतन में पानी रची नई राजधानी है, नदियां भरे हिलोर बहती जावे घनघोर, लगी साजन सडोर चले चाल मस्तानी है, लगे सुहाने पहाड़ नाना सिर रहे दहाड़, ऐसो आयो अहे असाड़ वे झरनों को पानी है, कर कर के सिंगार गावे गीत मलहार, परे तन पे फुहार पावस सुहानी है, परे तन पे फुहार ऋतु पावस सुहानी है, पर तन पे फुहार ऋतु पावस सुहानी है। और एक गीत पावस विषय पे मैं आपके बीच में रखूं, क्योंकि बहुत सुंदर महीना हो गए पावस को, कि पावस ऋतु है बड़ी सुहानी, कोयल कूके बागन में, पावस ऋतु है बड़ी सुहानी।

तलैया सगरे भर गए रिम झिम बरसे सावन में। कि ओफन ओफन के नदियां आवे सबके ही राकू हर सहलो स

सावन में कि गदराए हैं बाग बगीचे, बदरा है रे ऊंचे नीचे, कड़ कड़ करके बिजुरी चमके, मेहा बरसत हैं फिर जमके, कुंजन कूके मोर शोर भयो, कुंजन कूके मोर शोर भयो, मथुरा और वृंदावन में ताल तलैया सगरे भर गए रिम झिम बरसे, सावन में ताल तलैया सगरे भर गए रिम झिम बरसे, सावन में कि चौबारे चढ़ जामे गोरी, हिल मिल नाचत हैं बरजोरी, पर फुहार बदन पे भारी, गीत मलार सुनावे प्यारी, कोयल मोर पपैया मिसुरी, कोयल मोर पपैया मिसुरी, सी घोरत हैं कानन में ताल तलैया सगरे भर गए रिम झिम बरसे, सावन में ताल तलैया सगरे भर गए रे मुझे मुबर से, सावन में कि तीज सलों ने बने सिमैया, आवे वादिन खाण खवैया, चतुर सुहागन हो या भोरी, हार सिंगार करें सब गोरी, छम छम पायल बजे पहर के, छम छम पायल बजे पहर के, नाचे अपने पामन में ताल तलैया सगरे भर गए रिम झिम बरसे, सावन में ताल तलैया सगरे भर गए रिम झिम बरसे, सावन में कि जब जब कारे बदरा छावे, लगे देव धरती पे आवे, लगे सुहाने पर्वत न्यारे, झरना बहवत हैं मतवारे, गवें सुरीले रसिया ब्रज के।

सावन में, और अंत में स्पर्श रखूं कि नामे बालक दे दे तारी, गूंजे आंगन में किलकारी, नामे बालक दे दे तारी, गूंजे आंगन में किलकारी, दीखे चहु दिस पानी पानी, होए धरा की चूनर धानी, खुशहाली को पूरो मंजर, खुशहाली को पूरो मंजर, दीखे आज फुहारन।

वृंदावन में, और दो छंद भगवान श्री कृष्ण के चरणन में मैं रखना चाहूं या पावस ऋतु में, कि मैं तो मन मुंह रखू हूं ज्ञान कछु हत नाए, मेरी बिनती पे थोरो ध्यान धर लीजिए, और राग द्वेष ईर्षा को चालन में चले मन देखे सद ज्ञान इन्ने दूर मोते कीजिए, कि माया मोह रूपी आवरण को दुपट्टा ओढ़ो, आरती उतारू तेरी तनिक न खीजिए, और विष वासनान विष फैल रहो मेरे तन, ब्रज रज रामा ब्रज राज दूर कीजिए, ब्रज रज रामा ब्रज राज दूर कीजिए। और एक छंद और रखूं, कि प्रेम रस झरना झरत तेरी रस नासो, रसिक रसीले तेरे नैन कजरा रहे, कि प्रेम रस झरना झरत तेरी रस नासो, रसिक रसीले तेरे नैन कजरा रहे, और आनन को तेज करे

0: जग में उजेरो भारी अधरन बांसुरी के सुर साध डारे हैं कि मोती मुकुता मणि को मन को लोभावे अति मानो अंग अंग कामदेव ने संवारे हैं और कहे कवि अभिषेक श्याम को वरण देखो काम के दुलारे तेरे काम मत वारे हैं काम के दुलारे तेरे काम मत वारे हैं काम के दुलारे तेरे काम मत वारे हैं। जय श्री राधे। कि ब्रज की वसुंधरा पे आखिर क्यों माला माल है हमारा ब्रज। कि ब्रज की वसुंधरा पे प्रेम रस धार वह वंशी के वजैया नंद लाल को कमाल है। कि ब्रज की वसुंधरा पे प्रेम रस धार वह वंशी के वजैया नंद लाल को कमाल है। कि भोरे भारे ब्रजवासी गंगा से पवित्र मनु आठो याम राधे श्याम एक सुर ताल है। कि कण कण में भरो है अनुपम गीता सार भगतों के अधेरों पे नंद जू को लाल है। कि कण कण में भरो है अनुपम गीता सार भगतों के अधेरों पे नंद जू को लाल है। और ब्रज के ब्रजेश तेने धन्य कीनी ब्रज भूमि जातिया जगत में जे ब्रज माला माल है जातिया जगत में जे ब्रज माला माल है। और लीला देखो सावे कन्हैया की कि गोपी चली ताजा लेके माखन गगरिया में श्याम ने डगरिया में कांकरिया मार दई। कि गोपी चली ताजा लेके माखन गगरिया में श्याम ने डगरिया में कांकरिया मार दई। और ऋषिया के खिसिया के बतिया बनान लगी झूंझर में अपनी ही चुनरिया फार दई। कि कंत सो कहूंगी उ निकार गो मरूर तेरी पहले फटकारी गोरी पाछे पुचकार दई। और लीला के चैया ने अनेक न्यारी लीला रची ब्रज की वसुंधरा तो प्यार में ही तार दई। ब्रज की वसुंधरा तो प्यार में ही तार दई। कि रोक के उसांस हरी आंखिन नटेर गयो गोपी घबराए के करत हाय दैया। और माथे पे पसीना आयो थर थर कांप देहो हमको न छोड़या को बल दाऊ भैया। कि लाला को उठा के मात यशोदा के द्वार चली उछर के कूद पर नाटक दिखैया। और नीचे नैन सूखे अधरान कहीं मात जाए तेरे छलिया सो हम हार गए मैया तेरे छलिया सो हम हार गए मैया। और एक बेर गोपिकाएं पूछ उठी बांसुरी सो बाता बहन कैसे पहुंची कान अधरान पे। कि हमने तो बेर बेर कोशिश में कीना देर आज लो ना पहुंचे हैं अधर अधरान पे। कि बांसुरिया बोली उठी त्यागो मैंने मूल रूप तब राज कर पाई श्याम अधरान पे। कि बांसुरिया बोली उठी त्यागो मैंने मूल रूप तब राज कर पाई श्याम अधरान पे। गोपिनी को भयो ज्ञान त्याग बिन कहां मान अधर रहे तिनाए पहुंचे अधरान पे अधर रहे तिनाए पहुंचे अधरान पे।
1: ब्रज का काव्यसुधा के अंतर्गत अभी आपने बावस ऋतु पे काव्य पाठ सुनो। कवि है अभिषेक भारद्वाज। और अब ये के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है।
0: ऋतु

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: ये थे अनूप जलोटा, हेमलता, शब्बीर कुमार और साथी। फिल्म थी चिंतामणि सूरदास। और आइए सुनते हैं अदनान सामी और साथियों को, फिल्म है बजरंगी भाईजान।
1: तेरे दरबार

अदनान सामी और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत के कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने बारे सब बहन भैया को राम राम। भैया सावन को महीना चल रहे है और धूम मची भई है अपने ब्रज में। ब्रज में सावन को महीना आते ही जैसे हर ओर उत्सव को रंग बिखर जाए है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल, पेड़न की डारन पे पड़ते झूला, मंदिरन में सजे हिंडोला और गूंजते सावन के गीत, पूरा ब्रज सावन की मस्ती में झूम उठे है। यहाँ सावन केवल एक ऋतु ना है बल्कि राधा कृष्ण की प्रेम और भक्ति से जुड़ी एक सुंदर परंपरा है। ब्रज के मंदिरन में ठाकुर जी के लिए तरह तरह के सुंदर हिंडोला सजाए जामे हैं। कहीं फूलन को हिंडोला, कहीं रंग बिरंगे वस्त्र और पत्तीन ते सजो झूला। हर दिन ठाकुर जी को नयो श्रृंगार भक्तन को आकर्षित करे है। भक्त बड़े प्रेम ते ठाकुर जी को झूला झूला में है और सावन के मल्हार और लोकगीत गामे है। ऐसो लगे है मानो स्वयं बिहारी अपने भक्तन के संग सावन को आनंद ले रहे हो। भैया ब्रज की गली में हूँ, सावन की अलग ही छटा दिखाई देवे है। महिलाओं के समूह सावन के गीत गावे हैं। पेड़न पे पड़े झूलान पे झूलती सखी और चारों ओर हरियाली, यह दृश्य ब्रज की लोक संस्कृति को जीवंत कर दिए हैं। और जब पूरे सावन वातावरण में किसान भैया की निगाह बादलन पे टिकी रहे हैं, क्योंकि ब्रज की ये हरियाली तभी और निखरेगी जब सावन की फुहार खेतन तक पहुंचेंगी। मंदिर में ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं और खेत में किसान अच्छी बारिश की आस लगाए बैठे हैं। दोनों ही सावन के आनंद और उम्मीद से जुड़े हुए हैं। भैया जायले ब्रजवासी सावन में केवल झूला न झूले बल्कि मेघन ते भी यही मनुहार करे है कि खूब बरसो और धरती को तृप्त करो और खेत खलिया को हरियाली से भर दो। तो भैया आओ सावन की जा पावन बेला में हम अपनी लोक परंपरा को भी सहेजे और प्रकृति को सम्मान भी करें। मंदिरन में झूलते ठाकुर जी, सावन के गीत और बारिश की आस लगाए किसान, ये सभी हमारे गामन की बात सुंदर संस्कृति के प्रतीक हैं, जहाँ में भक्ति है, प्रकृति भी है और खेती किसानी से जुड़ी खुशहाली की उम्मीद भी। तो आओ सावन को स्वागत करें और यही कामना करें बरसे मेघ लहराएं खेत और किसान के घर आंगन में खुशीन को सावन उतर आए। भैया आप समझ रहे होंगे हमारा इशारों। जी हाँ, आपने सही पहचानो, आपको सुनवाए रहे हैं ये लोकगीत।

तो भैया अभी आपने आनंद लियो जान लोकगीत को, और अब हम आपको सुनवाए रहे हैं सेवर भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक समूह बैठक की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति सहयोग है नीलमणि शर्मा को, ओबी अंशदान देवराज कृष्ण दीक्षित और दिलीप यादव को, प्रस्तुत करता है संजीव कुमार व्यास और संयोजन ओपी सिंह को।

0: दो दिवसीय अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक बैठक का आयोजन दिनांक 17 और 18 अगस्त 2026 को सेवर भरतपुर में किया गया। इस बैठक का आयोजन भारतीय राई सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर के तत्वावधान में किया गया। बैठक में पूरे देश में राई सरसों अनुसंधान में कार्यरत संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के सैकड़ों वैज्ञानिकों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदाधिकारियों एवं सेवर भरतपुर के संस्थान कर्मियों व वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे ICAR के महानिदेशक डॉ. ML जाट। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ICAR के उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार यादव एवं विशिष्ट अतिथि डॉ. SS बग्गा, डॉ. SK झा, डॉ. VR चौधरी ADG ICAR का संस्थान निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने साफा पहनाकर स्वागत किया एवं संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवेचना भी की। इस संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं गतिविधियों पर जानकारी देते हुए आप हैं भारतीय राई सरसों अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रसार प्रमुख डॉ. अशोक कुमार शर्मा।
1: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा इस बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये हर वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों में किया जाता है। इस बार पहली बार ये हमने भरतपुर के अंदर आयोजित की है। इसमें देश भर के जो भी राई सरसों के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक हैं वो सब इस वार्षिक समूह बैठक में भाग लेते हैं और गत वर्ष जो भी राई सरसों अनुसंधान में प्रगति हुई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, उनका प्रेजेंटेशन होता है और जो अगले साल ये किस तरीके का हमें आगे बढ़ना है, क्या कार्यक्रम करना है उसके बारे में एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। इसका ही उद्देश्य होता है। विभिन्न जो हमारे विषय हैं जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इनके सबके जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग समूह में बैठ के चर्चा करेंगे। विगत वर्ष

0: उन्होंने क्या काम किया है, उसमें कितनी प्रगति हुई है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और अगले वर्ष के अंतर्गत वो क्या काम करेंगे, उसके दिशा निर्देश और उसका एक्शन प्लान जो है वो वैज्ञानिक स्वयं तैयार करेंगे। इसी वार्षिक समूह बैठक के अंतर्गत है जो हमारे एक माननीय डिग्निटरीज हैं, ऑनरेबल DG सर हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि भविष्य के अंदर राई सरसों की जो अनुसंधान है वो किन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को फोकस करके आगे बढ़ना है। माननीय DDG क्रॉप साइंस ICR के थे, वो भी आज चेयर किया इन्होंने, तो उनके जो मार्गदर्शन है किस तरीके से अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित परियोजना के अंतर्गत जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको किस तरह के सपोर्ट की आवश्यकता है, क्या परेशानी आती है उनको दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस तरीके का सपोर्ट किया कर सकते हैं, वो सब मार्गदर्शन भी उनके द्वारा दिया गया है। ये 2 दिवसीय वार्षिक समूह बैठक है, इसके अंदर ब्रीडर सीड प्रोडक्शंस के बारे में भी एक चर्चा होती है, देश भर के अंदर राई सरसों की कितने ब्रीडर सीड की आवश्यकता है, कितना इंडेंट हम लोगों को मिला है, कितना गत वर्ष के अंदर इसका प्रोडक्शन हुआ था और अगले वर्ष का क्या टारगेट है उसके बारे में भी एक सेशन किया जाएगा। साथ के साथ टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन है कि जो गत वर्ष में हमने देश भर के अंदर करीब 3000 से अधिक जो प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया है, उन प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों के क्या परिणाम रहे और उसमें कितनी उत्पादकता का अंतर रहा उसका भी एक सेशन है, कैसे टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन कार्यक्रम को हम और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। समूह के अंतर्गत ही वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी की एक बैठक होती है जिसके तहत हमारे जो वैज्ञानिकों द्वारा विगत वर्षों से जो प्रयास किए गए और जो किस्में उन्होंने विकसित की है तो कौन सी किस्में हैं जो कि ABT ट्रायल में, IBT ट्रायल में और जो ट्रायलों में पास होके अब अगर वो प्रचलित किस्म है उनसे करीब जो हमारा क्राइटेरिया है कि 10% से अधिक उपज हो या तेल में उसमें अधिकता हो या कोई और उसके अंदर गुण हो, तो उसके आधार पर भी जो वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी उन किस्मों को चिन्हित करेगी और उसके बाद में वो कमेटी के अप्रूवल के बाद में वैराइटी जो नोटिफिकेशन के लिए भारत सरकार के वहाँ जाएगी, वहाँ से गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में वो किसानों के लिए जारी जाएगी। और साथ के साथ जो नए आज विषय चल रहे हैं जैसे कि हाइब्रिड ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, जीनोम एडिटिंग का प्रोग्राम है, इस तरह के विषयों के ऊपर भी जो हमारे विशेष एक्सपर्ट हैं देश भर के उनका भी हम लोगों ने इसके अंदर उनके लेक्चर रखे हैं, उनका गाइडेंस लेंगे हमारे वैज्ञानिक ताकि जो भविष्य के अंदर नई तकनीकें आ रही है विज्ञान के अंदर राई सरसों के अंदर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, जो हमारे विभिन्न सेंटर हैं उन सारे सेंटरों के जो वैज्ञानिक है वो उसके अंदर अपना अनुसंधान करेंगे। और चूंकि ये एक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई है तो हमारे करीब पूरे 150 के करीब इसमें जो वैज्ञानिक देश भर से जिसमें जुड़ रहे हैं सब लोग इसमें चर्चा करेंगे और राई सरसों अनुसंधान और तकनीकी जो विस्तार है उसके लिए क्या एक आगे की गाइडलाइन होनी चाहिए, जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान है कि हमारा जो देश है वो तिलन में आत्मनिर्भर बने, उन सब के लिए क्या रणनीतियां रहेगी, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा होगी। ये साल भर में एक ही बैठक होती है और हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है, तो इस बार ये भरतपुर में भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा पहली बार आयोजित की गई है। तो इस बैठक के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल और आने वाले भविष्य के लिए जो भी रणनीतियां जो भी चुनौतियां उसके अनुसार ही अनुसंधान की दिशा तय होगी।
1: कृषि एवं सरसों फसल से जुड़ी गतिविधियों एवं वैज्ञानिक जानकारी के महत्व पर बोलते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक तिलहन डॉक्टर SK झा,
2: किसानों के पास ये चीज ये किस्में ये तकनीकी अगर नहीं पहुँचती है तो उसका क्या लाभ, तो इसके लिए संस्थान से शुरुआत जैसे हम करें तो ये मुख्य रूप से अनुसंधान के लिए हमारी संस्थान है, लेकिन इन वैज्ञानिकों को एक जिम्मेदारी और दी गई है कि वो किसानों के बीच में जाके उनके खेतों पे अपने तकनीकों का किस्मों का प्रदर्शन करेंगे, FLD जिसको हम कहते हैं, तो वो FLD करने का एक कार्यक्रम होता है जिस आधार पे हम ये निर्णय कर पाते हैं कि किस इलाके में हमारी कौन सी किस्में कौन सी तकनीकी अच्छा कर रही हैं, तो ये एक लिंकेज हो गया। इसके अलावा हमारा किसान से लिंकेज करने का कई तरीका है, जैसे आज के समय में सोशल मीडिया, बहुत हद तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी के ही नेतृत्व में हमारा इस संस्थान के माध्यम से जो किसानों से जुड़े हुए हैं जिसमें हम फेसबुक के माध्यम से चले जाते हैं, उनके पास व्हाट्सएप के माध्यम से जाते हैं। हमारी संस्थान जो है वो एक मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट कम एडवाइस

बिजली ये भी काम करती है कि उनको सप्ताह में क्या कैसा मौसम रहने वाला है, अगर उस मौसम की जानकारी उनको पूर्व में हम दे देते हैं कि 4 दिन बाद बारिश होगी तो आप सिंचाई मत कर लेना क्योंकि वो व्यर्थ जाएगा। तो इस तरह की जो एडवाइजरी है ये एक जुड़ने का हमारा उनके साथ में एक तरीका है। इस तरह से हमने अपने वेबसाइट बना रखे है, कृषि विस्तार इस माध्यम से, इसके अलावा हमने कई तरह के एप्स बना लिया है जो आजकल मोबाइल के माध्यम से आपने, जिसमें आपको क्रॉप डॉक्टर कह लीजिए कि बीमारी की पहचान करना हो किसान को तो वो उनको देख करके वो पहचान कर पाते हैं। उनको अगर अपने इलाके के लिए किसानों को ये जानना हो कि हमारे इलाके के लिए कितना खाद देने की आवश्यकता है तो उसके लिए रिकमेंडेशंस हैं कि हाँ आप किस इलाके के हैं, आप अपना विवरण भर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा आप

0: है, आप अपना विवरण भर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा आपके लिए क्या संस्तुति की गई है। तो बीमारी हो गई, कीड़े हो गए, किस्मों के चयन कि आपके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त किस्म है। आप अपने खेतों की तमाम जानकारी देंगे कि हम बारानी करते हैं या हम सिंचित करते हैं, हम कब बुआई करते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये बताया जाएगा किस इलाके में रहते हैं, कहाँ के किसान हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी किस्म आपके लिए में सर्वोत्तम है। तो इन सब तरीकों से, इसके अलावा हमने रेडियो का कार्यक्रम आपके माध्यम से हमने बहुत दिनों से करते हैं, टेलीविजन का एक माध्यम रहा किसान से जुड़ने का, अब किसान चैनल तो डीडी किसान का एक चल ही रहा है जिसके माध्यम से हम रेगुलरली डीडी किसान के माध्यम से किसानों के बीच में तकनीकी जानकारी भेज रहे हैं। और किसान इसके अलावा हमारे संस्थान से जुड़े भी हुए हैं, हर राज्य से जहाँ जहाँ सरसों की खेती होती है एक किसानों का भ्रमण का कार्यक्रम भी होता है और वो हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको तकनीकी जानकारी देते हैं, उनको तरह तरह के एडवाइस देते हैं ताकि वो अच्छी पैदावार ले सकें। और व्यक्तिगत स्तर पे भी किसान कई बार हमारे नंबर्स पे हमें जानकारी मांगते हैं। तो इस तरह से हम कहें सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, टीवी है, रेडियो है, इन सब तमाम माध्यमों से हम किसान से जुड़ते हैं। लेकिन मुख्य काम हमारा वो नहीं है, मुख्य काम हमारा अनुसंधान है। जो इसके लिए विशेष तौर से जिम्मेदारी जिनकी तय की गई है व्यवस्था में, वो है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिनके पास तमाम अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो किसानों के साथ में वो तकनीकी हस्तांतरण के लिए कार्यरत होते हैं। ये तो हमने बताया कि जो हमारे पास में है, और हमें उद्वेग होता है कि हमारी तकनीकी किसान तक पहुँचे, सही जानकारी तक पहुँचे उनके तक। इसके लिए जो हम विभिन्न सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से जाते हैं।
1: इस कार्यक्रम एवं संस्थान की अन्य गतिविधियों पर जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह।
2: किसान भाइयों, ये जो वार्षिक समूह बैठक थी हमारी, ये आपको बताऊं 33वीं वार्षिक समूह बैठक थी, और ये बड़ा संयोग था कि हमारे वृत्त क्षेत्र में पुर में ये पहली बार आयोजित की गई। बाकी इसको हम किसी विश्वविद्यालय में और वहीं पे आयोजित करते हैं, तो ये भी एक संयोग रहा। और इसमें ये हाइब्रिड मोड में हमें जैसा आदेश मिला था की गई। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि कुछ लोग यहाँ आ जाएं, कुछ लोग आपके ऑनलाइन जो माध्यम है वीसी के माध्यम से जुड़े, लेकिन करीब हमारे 100 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें पूरे देश से इसमें सम्मिलित हुए। और इसके साथ साथ हमारे जो महानिदेशक हैं ICR के डॉक्टर ML जाट साहब, तो उन्होंने भी ऑनलाइन हमारे पूरे ग्रुप को संबोधित किया। और फिजिकली हमारे डॉक्टर DK यादव साहब जो कि उप महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान फसल विज्ञान के, वो यहाँ पूरे दिन रहे, उन्होंने पूरे प्रोग्राम को सुना। इसमें मूलतः हम ये देखते हैं कि जो पिछले साल जैसे 25-26 था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया फसल सुधार के लिए। फसल सुधार का मतलब मैं आपको बताऊं कि भाई हम जो वैरायटी का विकास करते हैं, जो आपको किस्में मिलती हैं, फिर उनका बीज बनता है, बीज आप तक पहुंचता है, फिर आपकी उत्पादन बढ़ती है, फिर आपको सारा तेल का ये सिस्टम जो हमारा चलता है वो चलता है आपके बीज के विकास से, वैरायटी के विकास से, तो उसका किया। उसके बाद में बढ़िया एग्रोनॉमी कैसे हो, एग्रोनॉमी का मतलब है कितनी स्पेसिंग रखी जाए, खरपतवारों को कैसे निकाल जाए, आपके खाद और उर्वरक का कैसे प्रबंधन हो, आपके प्लांट प्रोटेक्शन की बात होती है जैसे कि आपके कीट हैं, रोग हैं, व्याधियां हैं, इनका कैसे प्रबंधन किया जाए, नई नई चीजें कैसे आती हैं। उसके अलावा जैसे तेल की बात होती है, गुणवत्ता युक्त तेल की बात होती है, रूस से कमल की बात होती है, उसके बारे में विचार है। अगर आपके सूखा पड़ रहा है, आपके तेज धूप पड़ रही है, आपके कोल्ड पड़ रहा है, इससे कैसे बचाव हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो है कि किसानों को इन तकनीकों को कैसे लिया जाए। तो ये जो सब चीजें, इस पे जो मंथन हुआ पूरे दिन हुआ, और आपके दूसरे दिन पूरा मंथन हुआ है, वो ऐसा है कि नई नई विधाएं क्या हैं, वहां पे किसानों को क्या करना चाहिए, किसानों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके जो प्रजनक बीज है उसकी क्या स्थिति है, और इसमें ये होता है कि प्लान कैसे बनाया जाए। जैसे हमने 26-27 की जब आप बात करेंगे तो उसमें 26-27 में अब अक्टूबर में इसकी बिजाई शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए प्लान भी बनाना पड़ता है कि भाई इस सेंटर को ये काम करना है, उस सेंटर को ये काम करना है, क्रॉप के लिए ये काम करना है। तो ये सब जो प्लान है हमने बना के तैयार किया है। और इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो उप महानिदेशक थे डॉक्टर DK यादव, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें 4 किस्मों को अनुशंसित किया गया है। तो एक किस्म अपनी एक हाइब्रिड किस्म है जिसकी उत्पादन क्षमता आपके 30 क्विंटल से ज्यादा है, और 3 वेरायटी है, एक आपके 2 वैरायटी आपके जोन फर्स्ट के लिए हैं, और 1 वैरायटी हमारे इसी जोन थर्ड के लिए उसमें की गई है। तो ये हमारी उपलब्धि रही है कि हमने 3 वैरायटी देश के लिए।

0: और इसमें चिन्हित किए जो कि आगे जाके भारत सरकार द्वारा नोटिफाई होंगी और किसानों को उनका बीज मिलना शुरू हो जाएगा।
1: इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के समापन पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने कहा,
2: आप सभी जानते हैं कि AICRP जो है एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क हमारे देश का जो मल्टी लोकेशन टेस्टिंग के लिए टेक्नोलॉजीज के लिए है, और उसमें रेपसीड मस्टर्ड का भी एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है जिसमें 22 टोटल सेंटर्स हैं और लगभग 125 साइंटिस्ट भरतपुर को लगा के AICRP सेंटर्स के, यूनिवर्सिटीज के और जो हमारे ICR के इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को लगा के 125 के आसपास साइंटिस्ट का ग्रुप सभी डिसिप्लिन में काम करता है। और हर वर्ष अगर हम बात करते हैं तो जो नई स्कीम में अभी जो 26 से 31 की स्कीम में है तो हमने इंस्टीट्यूट के लिए लगभग 44 करोड़ रुपए 5 साल के लिए और AICRP के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। उसके अलावा रेपसीड मस्टर्ड एक बड़ा सौभाग्यशाली प्रोग्राम है कि उसमें पहले CRP ऑन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से अभी जो नया मिशन नेशनल मिशन ऑन हाइल्डिंग सीड्स है, CRP मोलिकुलर ब्रीडिंग है, इंसेंटिवाइजिंग रिसर्च है, तो कई प्रोग्राम के द्वारा हम इस कार्यक्रम को पोषित करते हैं। पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो 108 वैरायटीज जो हैं रिलीज हुई है जिसमें सरसों का सबसे ज्यादा शेयर 71 वैरायटीज हैं और काफी पोटेंशियल वैरायटीज पिछले समय में देखते हैं तो लगभग 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की वैरायटी आज की डेट में सरसों में हमारे पास है। उसके साथ ही अगर हमारी 700 एडिबल ऑयल्स को देखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सरसों का एक बहुत ही विशेष योगदान है, लेकिन इन सभी प्रयासों के बाद भी जैसे प्रोडक्टिविटी का काफी अच्छा एनहांसमेंट रहा शुरू से जब हम शुरुआत की बात करते हैं और अभी तक, लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर के डेटा देखते हैं तो 16.41 मिलियन टन का एक्सपोर्ट जो हमारे एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया गया, एक देश के लिए बड़ा ही एक चिंता का विषय है। चैलेंजेस आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है हमारा वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आज की डेट में 22 केजी पर कैपिटा के आसपास हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑयल का है, जो शुरुआत में जब 1995 में हमारा सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते तो सिर्फ 6.73 केजी पर पर्सन की कंजम्पशन थी। उसी तरह से जो एरिया जो फ्लक्चुएट होता है मस्टर्ड का एरिया आमतौर पर फ्लक्चुएट बारिश के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर 45-50% से ज्यादा एरिया रेन फेड है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है सरसों का, तो उसमें जो अधिकतर क्षेत्र बरानी क्षेत्र में आते हैं तो वो भी एक इशू है। उसके अलावा जो अमर्जिंग पेस्ट है आप देखते हैं डिजीजेज में स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट है, जो वीड्स में ओरोबंकी है, उसके अलावा आजकल कुछ एक जो कम्प्लेक्स है बंजाई का वो जर्मिनेशन के समय काफी नुकसान करता है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से। और जो एबायोटिक स्ट्रेसेस में अगर बात करते हैं तो ड्रोट एक इशू है ही, हीट जो बिजाई के समय हीट है, पकाव के समय हीट है, उसके अलावा जो फ्रोस्ट है, तो ये काफी चीजें जो वेरियस बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स। और जो मस्टर्ड का एरिया हम देखते हैं वो टोटली प्रोक्योरमेंट एरिया पे भी काफी प्रोक्योरमेंट रेट्स पे भी काफी डिपेंड करता है, जिस साल रेट अच्छा होता है उसके अगले साल एकदम से एरिया बढ़ जाता है और 1 मिलियन हेक्टेयर के आसपास उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये सभी इश्यू हैं जिनको हमें इस कार्यक्रम के द्वारा किस तरह से हम इनको एड्रेस करें, प्रोग्राम में पहले से भी काम करते हैं उस पे कार्य करने की आवश्यकता है। दो मीन जैसे हम बोलते हैं कि वर्टिकल एनहांसमेंट जिसमें कि प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है, वैरायटीज के अलावा जो उसकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का भी उतना ही रोल है, तो उस पर भी जितना भी हमारा ग्रुप है चाहे प्रोटेक्शन है चाहे NRM है फिजियोलॉजी है, इन लोगों का स्ट्रेस उस प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में एरिया एक्सपेंशन का आप सभी जानते हैं कि कंटेम्प्रेरी क्रॉप्स को हटाना मेन एरिया में बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें जो नए एवेन्यूज ढूंढने हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है जिसमें हम अभी काफी गुंजाइश है कि लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया के आसपास अगले 5 साल में अगर हम टारगेट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी से कुछ तोरिया की वैरायटी से तो निश्चित रूप से हम उस एरिया को ले सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में कुछ स्कोप है मस्टर्ड को और अधिक एरिया बढ़ाने का। उसके अलावा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज हैं, गन्ने में एक बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे कि गन्ने नवंबर की बिजाई के बाद और जो फरवरी मार्च में गन्ने की जब दोबारा से प्लांटिंग होती है उस समय भी जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज का एक विशेष महत्व है। तो इन सभी बाकी जो क्रॉप में वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट का सीड रिप्लेसमेंट रेट का काफी अच्छा वो है योगदान, और आज जो हमारी प्रोडक्टिविटी 1460-1463 केजी पर हेक्टेयर है थर्ड एस्टिमेट के हिसाब से, उसको हम किस तरह से 2030-31 तक 2070 केजी पर हेक्टेयर का टारगेट रखते

0: हुए हम प्रयास करें ताकि जो हम जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम पूरा कर पाएं। फोकस के जो एरियाज हैं मेरे विचार से क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज की बात की गई, पहले भी की गई, और आज की डेट में जिस तरह का आप पीछे जो एल नीनो का इफेक्ट हम देख रहे हैं और जो इंटरनेशनल सिनेरियो था, तो उसमें न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी पर कार्य करने की हमें बहुत आवश्यकता है। किस तरह से हम फर्टिलाइजर का यूज घटा सकें और ओवरऑल इनपुट यूज एफिशिएंसी में वाटर भी एक बहुत ही प्रीशियस कंपोनेंट है, और जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी बार बार जो हम इशू महसूस करते हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि काफी एरिया जो रेन फेड के अंदर है, तो हीट जो ड्रॉट टॉलरेंस पे भी कार्य को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। डिजीज में जो एबायोटिक स्ट्रेसेस में मेन थी जो आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या स्क्लेरोटिनिया है, राजस्थान में और गुजरात और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के हैं, उसमें ओरोबंग की एक बहुत भारी समस्या है, एफिड अगेन एक बड़ी समस्या है, और जर्मिनेशन और मैच्योरिटी के समय जो हीट की समस्या है, तो इस पे हमारे कार्यक्रमों की सभी को फोकस ले जाने की आवश्यकता है। हाइब्रिड पे हम काम कर रहे हैं, हाइब्रिड आए भी 4-5, एक अलग से प्रोग्राम भी शुरू किया, लेकिन वो हाइब्रिड अभी तक किसान के पास उस अवस्था में नहीं पहुंच पाए जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो हाइब्रिड के कार्यक्रम को अभी नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स में भी हमने प्रयास किया है कि हम हाइब्रिड्स को और अधिक बढ़ावा दें, और काफी मात्रा में बजट का प्रावधान उसमें किया गया है।
1: तो अभी आपने सुनी सेवर भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक समूह बैठक की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति सहयोग हो नीलमणि शर्मा को, ओबी अंशदान देवराज कृष्ण दीक्षित और दिलीप यादव को, प्रस्तुत करता है संजीव कुमार व्यास और संयोजक है ओपी सिंह। और भैया जाई के संग कार्यक्रम को दे विराम, सब बहन भैया को राम राम।

अभी आप ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बने पारीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता, 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
1: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ प्रदेश के बजट को, जीएसडीपी को और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
1: बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
0: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: इस मौके पर जापान की 2 कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को नंदन नीलकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज भारत दौरे पर आए नाइजीरियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ अलियु साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक

0: और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मौर्य ने बताया कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण दुनिया के अलग अलग देशों से दुनिया की सरकारें अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रही हैं।
1: प्रदेश की दृष्टि से हम लोग, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो चाहे खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र हो, हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसी का आकर्षण दुनिया के अलग अलग देशों से वहाँ की सरकारों के द्वारा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया, उसका सुपरिणाम।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्रा कल से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं।
2: निर्माण अब मंदिर परिसर में पूर्ण हो गया है। पूर्ण स्मृति स्तंभ था उसका अब आज कल में सबसे ऊपर जो लोगो लगता है वो अब लगना बाकी है। रामकथा संग्रहालय उसमें अभी हम लोग समीक्षा करेंगे। सभी गैलरीज की जो स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी लाइन पूरी हो चुकी है।
0: रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की 529वीं जयंती आज चित्रकूट और उनकी जन्मस्थली राजापुर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राजापुर सहित चित्रकूट जिले में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों की धूम रही। राजापुर स्थित तुलसी स्मारक में श्रद्धालुओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। वहीं तुलसीदास के जीवन, संघर्ष, भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने काव्य पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक योगदान को याद किया। झांसी में बेतवा नदी पर बना 140 वर्ष पुराना पारिक्षा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है। प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि पारिक्षा बांध को फ्रांस के मार्सेई में 14 अक्टूबर को होने वाली 26वीं आईसीआईडी इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के दौरान WHIS अवार्ड 2026 दिया जाएगा। इस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मान्यता दे दी है। ये बांध करीब 140 साल से बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर आज जनपद बलिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया। कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को नमन करते हुए नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि 19 अगस्त का दिन पूरे देश के साथ साथ बलिया के लिए विशेष गौरव का दिन है। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक। कहा साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है दोनों देशों की साझेदारी। जापान की कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हुई वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग, परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक के मामले को रोकने के लिए परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। और झांसी में बेतवा नदी पर बने पारिक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14

0: अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कहना श्रीमती मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं मन भावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और पुनदी भाई बागरी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीडी मेहलोत्रा ऋतिक मेहलोत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी शवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी। भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली वैष्णवी उषा युवराज गोंधली और उनके परिवारीजन। गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठल लाल सारस्वत नेहा नीरज निकेता और इनके माता पिता। जिला मगड़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राजे विद्यार्थी राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार विद्यार्थी आनंद कुमार अच्छेलाल राय बुल्की वाली और फालना झा। गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सादीब नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम और उनके परिवारीजन। आदर्श नगर मुलुट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मेंडी शर्मा सौरभ साइना शर्मा और निवान शर्मा। गांव नगला पोला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह रामानुज राधिका पवन करण नमन भोला डुग्गू और उनके परिवारीजन। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी जहीरा बेगम अंसारी मोहम्मद अयान अंसारी मोहम्मद उस्मान अंसारी मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। गांव नौघरा से कोमल मास्टर यशोदा लाखन सूरज रोहित चंचल संजना और उनके माता पिता। आप हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत अमित शुभांश शुभांगी चुन्ना और उनके माता पिता। करणवीर हाउस भुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दबंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजोत। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। वनस्थलीपुरम हैदराबाद से दोरनाला बालाजी श्रीमती रेणुका बद्री हिरणी लोकेश और साई कृपा। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला रोशनी चेतन विशाल और बेबी प्रियांशी। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। पैठण से महादेव परदेसी शेख चांद शेख अदनान शेख रुमान शेख जाकियाबाजी। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग

एक आकांक्षा मलिक और माही मलिक, सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन और उनके परिवारीजन, जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक, सुरेश चौरसिया और उनके परिवारीजन मित्रगण, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और हांगोड़े परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सबके लिए कुमार सानू और अलका याग्निक को। फिल्म है खुददार, संगीत निर्देशक हैं।

खुद्दार फिल्म का गीत अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में सुना। अब जो हमें संदेश मिले हैं उनके नाम हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद प्रदीप येमेकर और उनके परिवारीजन, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत वर्मा, मुरली नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा, छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, राहट कंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य, शेरवानी स्कूल गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, पूर्वी हेजल, रेशमा साहू और राजेश साहू, ग्राम अमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, मुनीरुनिसा और उनके परिवारीजन, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, जमशेदपुर झारखंड से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश और देवेन, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, अभय कुमार सतनानी, बिहरा बाजार झुमरी तैलिया गृहिट से गुड्डू कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू और उनके मित्रगण, छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, बटंडा रोड मंडी डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग और उनके परिवारीजन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए सुदर्शन फाकिर की रचना, संगीत निर्देशक चन्नी सिंह, गायक स्वर उदित नारायण और सपना मुखर्जी के, फिल्म का नाम यलगार।

उदित नारायण और सपना मुखर्जी को भी आपने सुना, फिल्म थी यलगार। और अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म है सुहाग। गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद भेजने वाले श्रोता हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और उनके परिवारीजन। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, साइमीरा, अजमीन गुड़िया। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक। दादरीगढ़ भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। आप हैं चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश।

दिल संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुश दिल सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुश दिल हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुश दिल संजीव बंडी जिंदल और उनके परिवारी जन। मुजफ्फरपुर बिहार से आरन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नास और सरिता गौतम।

ये थे किशोर कुमार, फिल्म थी अनुरोध। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं चांदनी चौक, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साईं गायकवाड़, झारखंड से सुखरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और उनके परिवारीजन, वालेंखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवार के सभी सदस्य।

राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, फूलो देवी, चुलबुल रंगीली, राजा बाबू और उनके मित्रगण, नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और उनके मित्रगण। और श्रोता वसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल। फिल्म थी वो सात दिन। संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं।

संवेद स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है यारियां। पहले सुनिए इस फिल्म में मोहम्मद इरफान की आवाज में गाया ये गीत।

मोहम्मद इरफान की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, और भाई सुनते हैं इसी फिल्म में यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ को।

ये थे शफ़ाक़त अमानत अली, इनकी आवाज़ में गाया ये गीत आपने सुना। इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी यारियाँ। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: भारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में

करेगी। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकार

0: सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन वन्य जीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

0: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
2: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees. Clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible

ये थे किशोर कुमार, फिल्म थी एक महल हो सपनों का, गीत सहर लुधियानवी का था, संगीत निर्देशक थे रवि। और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह को, फिल्म है गुरुदेव।

ये थे लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज, फिल्म थी सिंदूर। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत परेलाल। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: Abhishek hai.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था। और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है, एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह हम बैंक

0: बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि चार बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए। तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाए जहाँ पे वहाँ के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि, ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीए ट्रांजेक्शन जो 18 से 29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल अशीर्ण जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझे और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि, और अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है, साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा, उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगा कि पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है, और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने यह भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफस्टाइल वाउचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो अकल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पर रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय

0: कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
1: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो। बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की एड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की एड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के एड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
2: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम्प कर नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन ने बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटीरियल रेडी हो रहा है जो मटीरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था FM का भी था, कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे अश्विन जी बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडी वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है, इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
0: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
2: तो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया जो 14.60

0: 0.39 आ गया. अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है. तो इस कॉन्फ्रेंस में इसको भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीके हो जाता है कि हम लोन तो दे देते हैं बट उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती. तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है. तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलोअप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी.
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है. तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहे, तो सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलोअप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है. तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है. और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा. अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी. तो यानी हर अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है. और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की गई, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता. तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो. तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: जी. और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए. लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं. अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है.
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें
2: काम. हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी. नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
0: इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली. तो क्योंकि आपके पास है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीए बढ़ रहा है, बट उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया. तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया.

0: IBM में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट, कि कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब OTP के ऊपर काफी हुआ, तो अब लोगों को OTP समझेंगे कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कोई मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फोरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके, उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा एक सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
0: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा, कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इंप्रूवमेंट के ऊपर ही, तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा, और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित

0: भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे दो दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा। और जैसे रश्मि सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए, दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 20 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी, जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्री जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वही प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहा है, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, अब बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या एफडी के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं अल्टीमेटली, तो ये है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल

ये थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथी। फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन। और आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और बाबला को। फिल्म है तहलका, गीत संतोष आनंद का, संगीतकार हैं अनु मलिक।

ये थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथी। फिल्म थी शराबी, गीत अनजान का था, संगीत निर्देशक थे बप्पी लहरी। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन। आज आप सुनेंगे इनका बजा राग मधुसूरावली चंद्रकोंस यमन। तो आइए आनंद लेते हैं शहनाई वादन का। वादक कलाकार हैं पंडित जगन्नाथ और उनके साथी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय

0: पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gaur today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir.